0: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ieefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर।

हैं, उसके मतलब जो हैं वो अपने हिसाब से बदल दिए हैं। जैसे कि थम्स अप जो है इमोजी का मतलब सिर्फ ओके नहीं रह गया है, बल्कि जब आप किसी बात को लेकर रूखा व्यवहार करते हैं तब भी थम्स अप का इस्तेमाल करते हैं। जुड़े हुए हाथ नमस्ते हैं या थैंक यू, या फिर सरकास्टिक वे में आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फैसला भी हम अपने मन मुताबिक कर लेते हैं। तो ये है इमोजी की भाषा, आप जितनी जल्दी समझ जाएं अच्छा है, क्योंकि अब तो ज़्यादातर लोग इमोजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे उसका मतलब आप कुछ भी निकालें, पर इमोजी को समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है।

ये है म्यूजिकल दिल लगी, मैं हूँ नीतू आपके साथ। और इमोजी की अगर हम बात करें तो इमोजी ने ना दुनिया को एक बिल्कुल नई भाषा दी है। उसके ज़रिए आप रिएक्ट करते हैं और पूरी बात ख़त्म, यानी सिंपल एंड शॉर्ट। मगर ये जो सिंपल एंड शॉर्ट है ना, कभी कभी गलतफहमी भी शुरू हो जाती है इस भाषा से। और वैसे भी हम हिंदुस्तानी जो है ना, हर चीज़ को अपने हिसाब से ढाल लेते हैं, तो हमने इमोजी को भी अपने मतलब के हिसाब से ना बदल दिया।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न आईटीआर 1 या आईटीआर 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।

91.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल लगी। और इस दुनिया में ना इतनी अच्छी चीजें हैं, लेकिन उनके साथ साथ ना कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो बहुत सारी कड़वी सच्चाइयों से ना हमें अवगत कराती हैं। और आज का दिन ना ऐसा ही है, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस, जो कि हमें उस कड़वी सच्चाई से रूबरू कराता है कि कई बार इंसानों की खरीद फरोख्त किसी वस्तु की तरह की जाती है, उनके सपनों, मजबूरियों और भरोसे का सौदा करके। बेहतर जीवन, नौकरी या सुरक्षा के नाम पर अनगिनत लोग शोषण और अत्याचार के जाल में फंस जाते हैं। ये दिन सिर्फ जागरूकता का नहीं बल्कि संवेदनशीलता का भी आह्वान करता है, ताकि हम संकेतों को पहचानें, आवाज उठाएं और एक ऐसे समाज के निर्माण में भागीदार बनें जहां हर इंसान गरिमा और स्वतंत्रता के साथ जी सके।

पीएम युवा योजना युवाओं में उद्यमिता और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और जो भी जरूरी संसाधन है वो सब उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि वो स्वरोजगार के अवसर सृजित कर आत्मनिर्भर बन सके। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, और ये है म्यूजिकल दिल लगी। मैं हूँ आपके साथ नीतू।

हम सब लोग ना बहुत सारे विचारों में उलझे रहते हैं, लेकिन किन विचारों में उलझे रहते हैं अब देखिए, इसका पता भी वैज्ञानिक लगा रहे हैं। कमाल की बात है ना, खुद हमें नहीं पता होता कि हम किन विचारों में उलझे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि ज़्यादातर इंसानों का दिमाग काम, कॉफ़ी और नींद के विचारों में उलझा रहता है। हालांकि इसे चार कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें एक है देश दुनिया की चिंता करने वाले लोग, दूसरे जिनका दिमाग शारीरिक मानसिक स्थिति पर केंद्रित रहता है यानी अपने स्वास्थ्य पर, तीसरे घर के कामकाज और पैसों के हिसाब किताब में लगे रहने वाले हैं, और चौथे जो सिर्फ कामकाज और शौक के बारे में सोचते हैं। तो आप किस विषय में ज्यादा सोचते हैं, आपको पता है ना? आई होप आपको पता हो।

ये जो क्या होगा है ना, ये जो क्या होगा है कि चिंता ये ना हमें बहुत कुछ उल्टा पुल्टा करने पे मजबूर कर देती है। यानी हम जब इस तरह की चीज़ें सोचने लग जाते हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये टेंशन जब दिमाग में आ जाती है ना, तो कभी कभी हमें पता नहीं चलता, लेकिन हम उन विचारों से के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते और उनसे भागने के लिए हम खुद को ऐसी एक्टिविटीज़ में उलझाए रखते हैं जो शायद ज़रूरी भी नहीं होती, पर हमें डर लगता है कि खाली होते ही हमारा सामना जो है ना उन विचारों के साथ हो जाएगा जिनके बारे में हम सोचना ही नहीं चाहते। अगर आपके साथ भी ऐसा है या आप नहीं मानते ऐसा है, तो थोड़ी सी निगरानी रखने की ज़रूरत है खुद पर, अपने विचारों पर, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ भी ऐसा है या नहीं है। अभी तो गाना सुनते हैं। अगला गाना आ रहा है छैला बाबू फिल्म से, बहुत ही पैपी सॉन्ग है ये भी, आप इस पे भी थिरक सकते हैं, नाच सकते हैं।

तो आप ये फैसला करते रहिए कि आपको क्या चाहिए, लेकिन मुझे अभी जाना होगा, मेरा फैसला हो चुका है। तो आप सुनिएगा अभी समाचार, और समाचारों के बाद मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी लेकर दिल का मेल बॉक्स। तो आपको कहीं नहीं जाना है, सुनते रहना है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों पर 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केन्द्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए।
1: इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बारे में जानकारी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने ये विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थियों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी और उन्हें कानून के पूर्ण दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंझलापुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने लोकसभा को बताया कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लगभग 39,000 परिवारों को छत पर सौर पैनल लगाया गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने लिखित जवाब में बताया कि 24 जुलाई 2026 तक प्रदेश में 38,955 सौर पैनल लगाए गए हैं। इनमें से 38,318 पैनल 3 किलोवाट 1 से अधिक क्षमता वाले, जबकि 387 पैनल 2-3 किलोवाट 1 श्रेणी में और 103 पैनल 2 किलोवाट 1 तक की क्षमता वाले हैं। अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए जब ईरान ने इस सप्ताह के शुरुआत में जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने लाखों शिव भक्तों की सुरक्षा, सुविधा और सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं।
2: कांवड़ पटरी मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रमुख घाटों, मंदिरों और संवेदनशील स्थानों पर राज्य पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। ड्रोन कैमरों, सीसीटीवी और अत्याधुनिक कंट्रोल रूम के माध्यम से हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि
3: हम कोशिश कर रहे हैं कि हर बार की तरह सभी शिव भक्त कांवड़ियों का हम यहाँ स्वागत करेंगे। बस सभी से हमारा यही अनुरोध है कि उनकी यात्रा अच्छी हो, सुखद हो, सरल हो, सुरक्षित हो।
2: कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष डायवर्जन योजना लागू की गई है। सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने आशा व्यक्त की कि आस्था, संयम और भक्ति का ये पवित्र महीना सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिक विकास और असीम शांति का संचार करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस पवित्र महीने में सभी के जीवन में खुशी, शांति, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण और गोवा, कर्नाटक, पंजाब और दिल्ली में भी आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि। अमरीका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू किए। अमरीका की संघीय अदालत ने लेखक सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले व्यक्ति को आतंकवाद का दोषी ठहराया। रूस की संघीय सुरक्षा सेवा ने टेलीग्राम के संस्थापक पावेल दुरोव पर आतंकवादी गतिविधियों में सहयोग करने का आरोप लगाया। दुरोव को अंतर्राष्ट्रीय वांछित सूची में डालने की प्रक्रिया शुरू। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में भारत के पैरा एथलीट दिलीप गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासित ने रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्री गोयल ने जेआरडी टाटा स्मारक व्याख्यान में कहा कि बढ़ते भू राजनैतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गों में व्यवधान के बावजूद देश का माल निर्यात मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात देश की आर्थिक बुनियाद की मजबूती को दर्शाता है, जबकि दुनिया भर के व्यवसाय पश्चिम एशिया में संघर्ष और प्रमुख शिपिंग गलियारों में व्यवधान से उत्पन्न अनिश्चितता से जूझ रहे हैं।
1: We're growing at 7.7% last year.
2: पिछले वर्ष हमारी विकास दर 7.7% रही, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये सब तब हुआ जब दुनिया भर में दो युद्ध चल रहे थे और बहुत ज्यादा अनिश्चितता और भू राजनीतिक संकट का माहौल था। पिछले वर्ष के ज्यादातर समय में अमरीका को किए जाने वाले हमारे ज्यादातर निर्यात पर 50% टैरिफ भी लगा हुआ था, फिर भी 26 मार्च को खत्म हुए साल में हमारे निर्यात में बढ़ोतरी हुई।
1: In the year ended March 26.
0: अमरीका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए जब ईरान ने इस सप्ताह की शुरुआत में जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। एक रिपोर्ट।
3: अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि सभी मिसाइलों को बीच में ही निष्क्रिय कर दिया गया और किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी बलों पर किसी भी हमले का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। इस बीच अमरीका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया ठिकानों पर संयुक्त हवाई हमले किए। इस हमले में 20 लोगों के मारे जाने की खबर

दिल का मेल बॉक्स आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपके साथ नीतू, और जो गाना आपने अभी अभी सुना वो था तराना फिल्म से, और देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी, अल कबीर ने इस गाने की फरमाइश की थी। आप भी अपनी कोई पसंद भेजना चाहते हैं हम तक तो fmgoldairdelhi@gmail.com पर भेज सकते हैं। अभी जो अगला गाना आप तक पहुंच रहा है वो ना खुदा फिल्म से है, और बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र, उमेश, प्रमिला बंछोर, इन सब की फरमाइश पर है ये गाना।

0: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न आईटीआर 1 या आईटीआर 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।

0: इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी FM गोल्ड पर तस्वीर में आज बात हो रही है सुल्तानपुर की, और वहाँ सर्दियों की शुरुआत होते ही जो नज़ारा है ना, वो पूरी तरह से बदल जाता है। साइबेरिया, यूरोप और मध्य एशिया जैसे दूर दराज क्षेत्रों से हजारों प्रवासी पक्षी लंबी उड़ान भरकर इस झील तक पहुँचते हैं, और उनमें बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जिन्हें आप ना मतलब देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत बिल्कुल अलग से, बहुत ही प्यारे से, डिफरेंट लगते हैं, और उनको आप प्राकृतिक परिवेश में जब देखते हैं ना तो किसी रोमांच से कम नहीं लगता। और उन विदेशी पक्षियों के अलावा आपको देशी पक्षी भी दिख जाएंगे, मोर, किंगफिशर, नीलकंठ, बया और बहुत सारे ऐसे पक्षी। अब तक यहाँ पर 250 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां दर्ज की जा चुकी हैं, जो कि इस उद्यान की जैव विविधता का प्रमाण है। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है ये, और ये है तस्वीर। मैं हूँ नीतू।

0: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।

0: इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ieefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

बात हो रही है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की, मैं हूँ आपके साथ नीतू। और कोई भी ऐसे जंगल होते हैं या उद्यान होते हैं ना, तो वहां पर सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप पक्षियों को, जानवरों को उनके प्राकृतिक व्यवहार में देख सकते हैं, बिना किसी अड़चन के, बिना किसी व्यवधान के। झील के चारों ओर बने पैदल मार्ग हैं, वहाँ वॉच टावर है, और वहाँ पर ना इस तरह से उनको तैयार किया गया है कि जो आने वाले पर्यटक हैं या आप अगर जाते हैं वहाँ, तो पक्षियों को बहुत ही करीब से आप देख सकते हैं बिना उन्हें परेशान किए। और अगर आपके मन में भी होना ऐसा कि उन्हें छूना है या उन्हें, आप ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो उनकी जगह है, उन्हें उनके ही घर में जाके परेशान नहीं करना चाहिए। सुबह की जो हल्की धूप है, पानी की सतह पर तैरते वहाँ पक्षियों के झुंड देखे जा सकते हैं, और एक साथ उड़ान भरते ढेरों पंछी और चारों तरफ गूंजती चहचहाट ना ऐसा अनुभव कराते हैं कि उन्हें शब्दों में बांधना बिल्कुल भी आसान नहीं है। वहाँ आप जाएंगे तभी महसूस कर पाएंगे।

अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान एक नेचुरल स्टूडियो है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय झील पर पड़ती सुनहरी रोशनी, पानी में बनते शैडो, उड़ान भरते पक्षियों के जो सीन है ना, उन्हें कैमरों में आप कैद कर सकते हैं। यहाँ पंछियों के अलावा नील गाय, सियार, मॉनिटर लिजर्ड, कछुए, तितलियाँ और बहुत तरह के पौधे भी देखने को मिलते हैं। यही जैव विविधता इस छोटे से राष्ट्रीय उद्यान को महत्वपूर्ण बनाती है। कई बार तो सर्दियों में आप सुबह वहाँ आर्टिस्ट लोगों को भी देख सकते हैं जो वहाँ बैठकर स्केच बना रहे होते हैं। और सर्दियों का मौसम इसीलिए ना देश विदेश से यहाँ आपको बहुत सारे

भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु म्यूजिशियन बने। प्री रजिस्टर्ड भर्ती दिल्ली और बेंगलुरु में 31 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक आयोजित की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए www.iafrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।

राष्ट्रीय दिलक मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज, साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 जुलाई महीने की 30 तारीख व दिन है गुरुवार। अब आरंभ होता

है आज का प्रसारण। आज के इस प्रसारण को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी रूम में उपस्थित रहेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर श्रीमती संगे छोमू। नियंत्रण कक्ष में उपस्थित रहेंगे अभियांत्रिकी सहायक श्री हिमांतो स्वर्गरी और सुश्री शिखा डेका। ट्रांसमीटर में उपस्थित रहेंगे अभियांत्रिकी सहायक श्री न्यूटन बोरा और श्री अच्युत बर्मन। मनपा उद्घोषक श्री थुतन ताशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं आज की हिंदी उद्घोषिका गेंदन थामू। आकाशवाणी तावंग से कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।

आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। श्रोताओं अब से चंदी पलों में सुनिए आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित मीडिया न्यूज, तत्पश्चात दोपहर समाचार 2:15 पर। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को सदन में पेश किया। श्री सिंह इस समय सदन को संबोधित कर रहे हैं।
1: एंड फाइन अप टू 50 लाख एज फार एज द सर्विस प्रोवाइडर इज कंसर्न्ड। नाउ इफ जयराम जी हैज नॉट रेड दैट आई विल रीड आउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। क्योंकि आप ही बार बार टोक रहे हैं और कह रहे हैं आपको ज्यादा। सर्विस प्रोवाइडर मींस एनी एजेंसी, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी बॉडी, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एनी बिजनेस एंटिटी, एनी कंपनी, एनी पार्टनरशिप और सिंगल प्रोवाइडरशिप, एनी सब एसोसिएट्स, एनी सब कॉन्ट्रैक्टर्स, एनी प्रोवाइडर ऑफ सपोर्ट ऑफ एनी कंप्यूटर रिसोर्स और एनी मटीरियल बाय व्हाटएवर नेम इट मे बी कॉल्ड व्हिच इज एंगेज्ड बाय द पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन।
0: लोकसभा ने कल लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पारित कर दिया।
2: परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए यह विधेयक संसद में लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10

0: करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने का प्रावधान है, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
2: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
1: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
3: मैंने कई बार सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है, प्रश्नकाल माननीय सदस्य का अधिकार है और प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। मैंने ये आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने पर मेटा ने अफसोस जाहिर किया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना की वजहें बताने को कहा है, साथ ही ऐसी गलतियों को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी देने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में कथित पेपर लीक को लेकर आज नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि पंजाब में फार्मास्यूटिकल्स परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। उन्होंने मांग की है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए, साथ ही पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की भी मांग की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 1 बजे तक पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर लगभग 20% मतदान हो चुका था। गुजरात की मंजलपुर सीट पर 21.66% मतदान की खबर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
5: वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने वडोदरा महानगरपालिका के पूर्व पार्षद सतीश पटेल को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष भीखाभाई रबारी पर दाव लगाया है। इस चुनाव में 2,19,000 से अधिक मतदाता इन दोनों उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। यह सीट भाजपा के वरिष्ठ

0: योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी, जिन्होंने कई बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। निर्वाचन आयोग ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर दोपहर 1 बजे तक 48.91% वोट डाले जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। विधानसभा क्षेत्र के सभी 291 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर केंद्र पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जा रही है। दतिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,20,000 मतदाता हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के बीच माना जा रहा है। यह उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद हो रहा है। दतिया उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान की महिला टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के

0: होने के बाद हो रहा है। दतिया उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान की महिला टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
2: आपने इस अभियान से, मैं कह सकता हूं कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने यह सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
1: ओडिशा के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बाढ़ की बदलती स्थिति से निपटने के लिए अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
3: लगातार बारिश की सबसे ज्यादा मार 5 जिलों बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज और केंदुझर पर पड़ी है। लगभग 5,88,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 1,76,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा दिलाने के लिए 3 दिनों के भीतर नुकसान का विस्तृत ब्यौरा सौंपे। इस बीच ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश से महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है जिससे नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वालों लोगों में चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा में भी कल तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक गरज चमक, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना है। भानु प्रताप सिंह के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। झारखंड के देवघर में आज से श्रावणी मेला शुरू हो गया है।
5: सावन के पहले दिन ही देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में लाखों शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पूरी बाबा नगरी बोलबम के अटूट विश्वास और केसरिया रंग में रंग गई। सुरक्षा के मोर्चे पर इस बार तीसरी आंख के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों का पहरा है। कांवरियों के पैरों को थकान न मिले इसके लिए नए फुट ओवरब्रिज से लगातार सुगम जलार्पण कराया जा रहा है, जबकि पूरे कांवरिया पथ पर ठंडे पानी की फुहारें, भव्य टेंट सिटी और निःशुल्क चिकित्सा शिविर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रकृति, पर्यावरण और संपूर्ण सृष्टि के प्रति सम्मान मानव अस्तित्व का आधार है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सेवा की भावना विकसित करने तथा एक स्वस्थ, समृद्ध और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। एक रिपोर्ट।
6: अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ये हमले ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर किए गए थे। इसके जवाब में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमरीकी कमांड के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान और उसके समर्थित समूहों से अमरीकी सैनिकों, वाणिज्यिक जहाजों तथा खाड़ी क्षेत्र के पड़ोसी देशों को होने वाले खतरों को कम करना है। इस बीच ईरान के खुजेस्तान प्रांत के 4 शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का क्रूर हमला जारी है। इसमें 40 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के प्रदर्शनकारी वर्तमान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की क्रूरता और लक्षित हत्याओं को लेकर रावलकोट के डी चौक पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक

0: मानवाधिकार संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से पाकिस्तानी बलों द्वारा घातक गोलीबारी की घटनाओं में हस्तक्षेप करने की अपील की है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कनाडा के ऑन्टेरियो में भारतीय पुरुष टीम ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमरीका से होगा। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में के फाइनल में भारत के दिलीप महादू गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित, अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना के तहत आज सुनिए मनहर उदास के आवास में श्री लक्ष्मी वंदना।
2: लक्ष्मी धन ऐश्वर्य संपत्ति तथा संपत्ति प्राप्ति के लिए श्री सूक्त का सस्वर पाठ तथा श्री सूक्त की ऋचाओं से घृत होम करने का विधान वेद आदि शास्त्रों में वर्णित है। विशेष रूप से आधुनिक युग में वेदादि मर्यादा से हीन मनुष्य श्रीहीन, कांतिहीन और चिंतित तथा अशांत दिखाई देते हैं। उनके कल्याण के लिए श्री सूक्त पूर्वक होम विधान अत्यंत लाभकारी है। प्रातःकाल खिले कमल में गुणों का आश्रय लेने वाली लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती है। प्रातः प्रबुद्ध कमलम आश्रयेत श्री गुणाश्रया। जो व्यक्ति सूर्योदय के समय स्नानादि से निवृत्त होकर श्री सूक्त का सस्वर पाठ सहित होम करता है, उसके पास संपूर्ण वैभव ऐश्वर्य से युक्त लक्ष्मी स्वयं आ जाती है। यही श्रीदेवी मनुष्यों को चिंता और शोक भरे भवसागर से पार उतार देती है। तरति शोकम आत्मवित। श्री सूक्त उपासना से मनुष्य सांसारिक वैभव तो प्राप्त करता ही है, उसको आध्यात्मिक संपत्ति भी प्राप्त हो जाती है। वह आत्मवित आत्मतत्व को सहज ही जान लेता है। जो व्यक्ति 21 बार श्री सूक्त के 16 मंत्रों से श्री होम करता है, वह सांसारिक ऐश्वर्यों के साथ साथ अष्ट सिद्धि और नव निधियों को सहज ही प्राप्त कर लेता है। इस मंत्र को सस्वर पढ़ने सुनने मात्र से ही व्यक्ति को आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों प्रकार की शांति प्राप्त होती है। जो मंत्र पाठ नहीं कर सकते, वे मंत्र सुनकर स्वाहा कहते हुए

हवन करें। मंगलवार से हवन पूर्वक श्री सूक्त का जप अत्यंत लाभकारी होता है। 72 दिनों में 25,000 विधि पूर्वक जाप करने से श्री सूक्त सिद्ध होता है। सिद्ध होकर ही मंत्र व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है। ओम शांति शांति।

0: लक्ष्मी गायत्री गायत्री मंत्र के समान ही महामंत्र है। गायत्री परात पर ब्रह्म के ध्यान से सिद्ध
1: श्रोताओं, भक्तिगीतों के दैनिक कार्यक्रम वंदना के तहत इस वक्त आप सुन रहे हैं मनहर उदास और साथियों के आवाजों में श्री लक्ष्मी वंदना, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। लीजिए कार्यक्रम वंदना जारी है इन्हीं कलाकार की आवाजों में।
0: संघर्षकर्ता व्यक्ति लक्ष्मी गायत्री का जाप करता है तो वो अभावों के समुद्र को बिना प्रयास ही पार कर जाता है। लक्ष्मी गायत्री से व्यक्ति जीवन की सुविधाओं को भोग कर प्रभु की कृपा से सुखद शांति प्राप्त कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। श्री सूक्त को होम पूर्वक पूर्ण करके लक्ष्मी गायत्री के जप की 11 मालाएं फेरने से मनुष्य के दुख दारिद्र्य और अभाव का विनाश होता है और परम शांति प्राप्त होती है।

ओम प्रभु शांति एक महात्मा का अनुभूत मंत्र है। इसका जाप करने से अशांति दूर होती है और विभिन्न क्षेत्रों में अनायास ही शांति प्राप्त हो जाती है। इस मंत्र से हवन करके जाप करने से तत्काल मनोवांछित फल प्राप्त होता है। यदि 5 मिनट भी कोई ओम प्रभु शांति मंत्र का जप कर लेता है तो उसके 23 घंटे 55 मिनट प्रभु स्वयं संभाल लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना मन हर उदास की आवाज में श्री लक्ष्मी वंदना। इसी के साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना यहीं समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बजे हैं। श्रोताओं, हमारे अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले सुनिए RBI द्वारा जारी एक जरूरी संदेश।
1: जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या?
2: ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
1: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है,
2: पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड है और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
1: सीनियर सबसे पहले, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: तो चलिए श्रोताओं, अब आरंभ करते हैं विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत को। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के तहत आज आनंद लीजिए कुमार सानू की आवाज में चंद बांग्ला गीतों का।

श्रोताओं इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कुमार सानू के आवाज में चंद बांग्ला गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के तहत, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। लीजिए श्रोताओं, विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित प्रादेशिक संगीत का यह कार्यक्रम जारी है इन्हीं कलाकार के आवाज में।

0: श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया कुमार सानू के आवाज में चंद बांग्ला गीतों का। इसी के साथ ही विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम महिला मंच। कार्यक्रम महिला मंच के तहत आज सुनिए मेजर रालिंगनाव बॉब खातिंग म्यूजियम ऑफ वैलर के म्यूजियम कोऑर्डिनेटर मिस संगली लेगुम सिंफो और गैलरी गाइड मिस लुपसांग छेकी से संग्रहालय और इसके महत्व पर हुए एक साक्षात्कार। साक्षात्कार करता है आकाशवाणी तवांग की हिंदी उद्घोषिका दोर्जी ड्रमा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी तवांग से प्रसारित कार्यक्रम महिला मंच में आप सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हम आकाशवाणी तवांग की टीम 190 माउंटेन ब्रिगेड तवांग में स्थित मेजर रलिंगनाव बॉब खाटिंग की वीरता का संग्रहालय में आए हुए हैं और हम यहां पर मुलाकात करने जा रहे हैं यहां के म्यूजियम कोऑर्डिनेटर सनली लेगुम सिंफो जी से। तो सनली जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ।
2: थैंक यू।
1: श्रोताओं, शायद आपको याद होंगे कि इस संग्रहालय के उद्घाटन गत 31 अक्टूबर 2024 को हमारे देश के वल्लभ सरदार वल्लभ भाई पाटिल, या उन्हें लोह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, तो उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर इस संग्रहालय के उद्घाटन हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आसाम के शहर तेजपुर से वर्चुअल माध्यम से किया गया। तो श्रोताओं, आपने इस संग्रहालय के बारे में सुने तो बहुत होंगे और आप में से कई लोग यहाँ पर दौरे भी कर चुके होंगे, लेकिन इस म्यूजियम के बारे में विस्तार से आज हम संगी जी से जानकारी प्राप्त करेंगे और आप तक हम जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे। जी हाँ, तो हम म्यूजियम में पहुँचने के बाद हमें सबसे पहले प्रवेश द्वार के सामने ही देखने को मिल रहे हैं कि द सोल ऑफ इंडिया सेक्शन, तो इसकी विशेषता क्या है, इस बारे में संगी जी आप हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: आप म्यूजियम जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले सोल ऑफ इंडिया दिखेगा। तो इसका रीजन ये है कि सोल ऑफ इंडिया हमने इसलिए बनाया ताकि हम इंडिया को एक तरह से यूनाइट कर सके। तो हमने सोचा कि अगर हम इंडिया को यूनाइट करना चाहते हैं तो हम किस तरह से सबसे अच्छी तरह कर सकते हैं। तो हमारे शेयर्ड स्ट्रगल्स, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल्स की जो कहानी है, उसी की मदद से हम हमारे इंडिया को ट्रूली यूनाइट कर सकते हैं। तो इसी वजह से सोल ऑफ इंडिया, जैसे ही आप म्यूजियम एंटर करेंगे तो आपको वो दिखेगा। एंड देन सोल ऑफ इंडिया पर आपको टोटल 36 कैस्क मिलेंगे। तो हमारे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, सो होल ऑफ इंडिया से हमने कलेक्ट करके यहाँ पे सारी सॉइल रखी हुई है। ईच एंड एवरी लोकेशन हमारी फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड जगहों से कलेक्ट की गई है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमने दीपा से कलेक्ट की है। दीपा पर इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले हमारा झंडा वहीं पर लहराया गया था, तो हमने दीपा से कलेक्ट की है। और फिर झारखंड जैसे जगहों से भी कलेक्ट की है, जहाँ पर नीलांबर और पीतांबर एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स थे, तो वहाँ पर उन्हें एक पैर पर हैंग कर दिया गया था ब्रिटिश द्वारा, तो उस जगह से भी हमने कलेक्ट की है। तो हमारे रिसर्च के द्वारा हमने उस एग्जैक्ट पैर को ढूंढ निकाला, फिर हमने उसी जगह से कलेक्ट। तो सिमिलरली सारी सॉइल्स ऐसे ही कलेक्ट की गई है। तो इस सॉइल को हमारे एक रॉयल अरुणाचल राइडर्स, एक ग्रुप ऑफ राइडर्स है, उन्होंने पूरी इंडिया ट्रेवल कर ये सॉइल्स कलेक्ट की है। टू बी प्रिसाइज, उन्होंने 25 डेज में 21 स्टेट्स कवर की है, और जो रेस्ट ऑफ द सॉइल्स है वो उनके बाइकर्स ग्रुप की कनेक्शन द्वारा यहाँ भेजी गई है।
1: जी जी, तो इस म्यूजियम के अंदर स्थित द सोल ऑफ इंडिया सेक्शन हमें ये बताती है कि हमारे इस महान देश के लिए देश भर में जहाँ जहाँ पर

0: स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे तो उन पवित्र जगहों से हमारे अरुणाचल प्रदेश के राइडर्स ने उन पवित्र माटी को लेकर आए और हम आज उन सारे जगहों पर जाकर देखना तो थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इस संग्रहालय के अंदर आकर आप उन सारे पवित्र जगहों का दर्शन कर सकते हैं। जी चलिए तो सनली जी, आप हम म्यूजियम के दूसरी सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं और आप हमें बताइए कि मेजर बॉब खाटिंग अ लाइफ ऑफ वेलियर क्या कहता है, क्या इसकी क्या विशेषता है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों को और बाहर के लोगों को ये जरूर जानकारी है कि हमारे तवांग को भारत देश में शामिल करने में मेजर रालंगनो बॉब खाटिंग जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, लेकिन उनके जीवन के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है, तो आप हमें बताएं।
1: फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर जब आप सोल ऑफ इंडिया देखेंगे उसके बाद आपको मेजर खाटिंग की जो लाइफ हिस्ट्री है उनके बारे में, उनकी लाइफ टाइमलाइन वो सारी आपको देखने को मिलेगी मेजर खाटिंग की गैलरी पर। तो इस गैलरी पर हमने उनकी लाइफ फेसेस रखी है, तो सारी उनकी अचीवमेंट्स, जो पोजिशन उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में हेल्प और वो कहाँ पर पैदा हुए थे वो सब, तो आपको अच्छी तरह से जानना है तो आपको खुद म्यूजियम पर आकर विजिट करके सब कुछ जानना पड़ेगा। लेकिन मैं इतना ही बता सकती हूँ, यहाँ पे आपको जब आप इस गैलरी पर आएंगे तो आपको उनकी प्रेजेंस फील होगी, बिकॉज आप जो उन्होंने तवांग ले किया था वो शायद बहुत बड़ी बात है और वो एक बहुत महान इंसान भी थे, बिकॉज एक ट्राइबल इंसान होके उन्होंने बहुत सारी पोजीशंस अपनी लाइफ टाइम में हेल्प, वो एक टीचर थे, एक सोल्जर थे, पॉलिटिशियन थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, फिर वो डिप्लोमेट भी, तो उसी वजह से हमने ये म्यूजियम उनकी याद में बनाया है। और उन्हें एक्चुअली 1957 पर पद्मश्री भी मिला था, तो वो मणिपुर के पहले ट्राइबल इंसान थे जिन्हें पद्मश्री मिला था। फिर उन्होंने अपनी एंड ऑफ करियर में बिफोर रिटायरमेंट वो एम्बेसडर टू बर्मा की तरह भी सर्व किए थे, उस समय भी वो एक ओनली ट्राइबल फ्रॉम इंडिया, फर्स्ट ट्राइबल फ्रॉम इंडिया हु सर्व्ड एज एम्बेसडर टू बर्मा थे। एंड अगर आप आगे मूव करते रहेंगे तो आपको उनकी पर्सनल आउटफिट्स देखने को मिलेगी, उनकी फैमिली एंड फ्रेंड्स ने यू नो मेजर खाटिंग के बारे में मेमोरी शेयर करते हुए आपको देखने को मिलेगी इस गैलरी पर।
0: जी हमें इस सेक्शन के अंदर आने के बाद ये पता चलती है कि मेजर खाटिंग ने अपने जीवन में किन पदों को प्राप्त किए थे, किन पुरस्कार को उन्होंने प्राप्त किए थे और उनके द्वारा उपयोग किए गए चीजें, उनके कपड़े और यहाँ तक कि उनकी असली आवाज हमें सुनने को मिलता है। और जैसे कि सनली जी ने कहा कि सचमुच हमें ऐसा लगता है कि मेजर खाटिंग यही है और हम उनके घर आए हुए हैं। और ऐसे ही हम संडी जी के साथ बातें करते करते अब म्यूजियम के तीसरे सेक्शन पर पहुंच चुके हैं जिसके नाम है द टेकिंग ऑफ तवांग 1951। इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी।
1: तो मेजर खाटिंग यहाँ पर 1951 पर आए थे और उन्होंने तवांग को 1951 पर ही तिब्बत से आजाद करके इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में लाया था, बिकॉज एट दैट टाइम तिब्बत के अंदर था तवांग, इट वॉज अंडर तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन। फिर ये जो टेकिंग ऑफ तवांग गैलरी है ये आपको पूरी कहानी इन अ वे, सो इट नेरेट्स द होल स्टोरी ऑफ हाउ ही इंटीग्रेटेड तवांग इनटू इंडिया। तो उनकी जर्नी कैसी रही, कौन लोग थे जो इस इंटीग्रेशन पर इन्वॉल्व थे, वो सारी आपको देखने को मिलेगी। एंड दो जो लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन पे यू नो दे हैड हैंड इन दिस इंटीग्रेशन वाज जयराम दास दौलतराम, हु वाज देन द गवर्नर ऑफ असम, एंड देन सरदार वल्लभ भाई पटेल। यू नो बिकॉज ऑफ हिम वी आर लाइक इट वॉज रिकग्नाइज दैट तवांग नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड इन टू इंडिया। सो ही वॉज द बिग ब्रेन बिहाइंड दिस होल ऑपरेट, दैट्स वाई वी ऑल्सो कॉल तवांग हिज लास्ट गिफ्ट टू इंडिया। एंड एस वी मूव ऑन, इस गैलरी पर आपको मेजर खाटिंग की खुद की हैंड राइटिंग एंड अगेन इंटरव्यूज जहाँ पे पीपल आर शेयरिंग द मेमोरीज और देयर एक्सपीरियंस, या जो उन्होंने फील किया था इंटीग्रेशन के वक्त, वो मेजर खाटिंग के बारे क्या सोचते थे और तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे क्या सोचते थे, वो सारी आपको इस गैलरी पर देखने।
0: जी जी जी, अब हम म्यूजियम के अंदर यूं ही चलते हुए अब ऐसी एक मजेदार सेक्शन में पहुंच चुके हैं जिसके नाम है मोन्यूल ब्लेस्ड लैंड ऑफ द मोनपा, जहां पर हमें ये देखने को मिलते हैं कि मोनपा जनजाति के लोग पुराने जमाने में किन चीजों के उपयोग करते थे, जैसे खाना बनाने के लिए, पहनने के लिए, और कपड़े किस तरह से बुनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है बुद्धिज्म के इतिहास। तो इस बारे में आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगे और जो

0: से पर्यटक आकर यहाँ देखते हैं उन सारे आर्टिफैक्ट्स को, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं होगी कि इसे किस तरह से उपयोग किया जाता है। तो अगर आपको जानना है तो आपको आगे डिजिटल सेक्शन की ओर बढ़ने होंगे और वहाँ पर आपको सारे चीजों को उपयोग किए जाने वाले वीडियो देखने को मिलेंगे।
1: सो दिस गैलरी इज कॉल्ड द हेरिटेज ऑफ मोन्यूल। यहाँ का कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन, सब कुछ आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस गैलरी की एक यूनिक बात ये है कि जब आप आएंगे तो आप आर्टिफैक्ट्स को एक्चुअली टच और फील कर सकते हैं। यूजुअली आप जब म्यूजियम पर जाते हैं तो आप डू नॉट टच वाले साइन देखते हैं, पर इस गैलरी पर आप एक्चुअली टच और फील कर सकते हैं। तो आफ्टर आप वो गैलरी पर टच एंड फील करके आएंगे, उसके बाद आपको डिजिटल गैलरी देखने को मिलेगा। तो इस गैलरी के बिहाइंड थॉट प्रोसेस ये था कि आप वहाँ पर सब कुछ फील टच करेंगे और यहाँ आके आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे डिजिटल कॉन्टेंट्स होंगे, तो आप यहाँ पे लाइफ ऑफ ब्लॉक पास देख सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने वहाँ पे आरा बनाने वाली यूटेंसिल देखी होगी, तो फिर आप यहाँ पर देख सकेंगे कि आरा किस तरह बनाया जाता है। उसके लिए हमारे पास 2 टीवी पैनल्स है जहाँ पे आपको वो देखने को मिलेगा। एनी अदर, छुरपी कैसे बनती है, ब्लॉक पास कैसे जीते हैं, जो आप शिंखा पहनते हैं मोनपास लोग, तो वो कैसी बनती है, वो भी आपको देखने को मिलेगी। एंड एट लास्टली वी हैव यहाँ पे जो होलोग्राम, दिस इज अ टेक्नोलॉजी, उसे होलोग्राम फैन कहते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगी। एंड देन आपको एक AV डिस्प्ले देखने को मिलेगा, दैट्स ऑडियो विजुअल डिस्प्ले, जहाँ पे आपको तोरग्या, जो यहाँ का बहुत फेमस फेस्टिवल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, तो वो डांस फेस्टिवल और जो कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए जो फेस्टिवल मनाया जाता है, उसका भी एक ग्लिम्स आपको देखने को मिलेगा। एंड लास्टली आई फॉरगॉट टू मेंशन, लेकिन जो मोनपा गैलरी है वहाँ पे आपको वर्चुअल रियलिटी, दैट्स VR हेडसेट्स, वो भी आपको मौजूद दिखेंगे। तो वहाँ पे हमने 3 मोनेस्ट्रीज, जो तवांग के इन एंड अराउंड सबसे पुराने मोनेस्ट्रीज की तरह जाने जाते हैं, दैट्स क्रोमटेन, किमनास और तकसंग, वो 3 गोम्पा के वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसे हमने इसीलिए रखा है क्योंकि इन मोनेस्ट्रीज में जाने के लिए, एक तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्रीज है, एंड अगर आपको वहाँ पे विजिट करना है तो इधर आपको बहुत हाइक करना पड़ता है या फिर फूड रिस्ट्रिक्शन से आप रसुन नहीं खा सकते, प्याज नहीं खा सकते। तो बाहर से विजिटर्स आएंगे तो अगर वो 2-3 दिन के लिए आएंगे तो एक पूरा दिन वो इन मॉनेस्ट्री पे डेडिकेट नहीं कर सकते, या फिर जो बूढ़े लोग हैं यहाँ के या बच्चे हैं, वो इतने स्ट्रेंथ वाइज इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो वहाँ पर जा सके, पर उन्हें फिर भी अगर वो म्यूजियम पर आएंगे तो बिना वहाँ जाए उनके मॉनेस्ट्री के दर्शन हो जाएंगे, उसी वजह से हमने वो रखा।
0: तो चलिए, हम एक ऐसी जगह पर पहुँच चुके हैं, एक ऐसी सेक्शन पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमें मेजर खाटिंग की असली स्वर सुनने को मिलते हैं, तो इस बारे में बताइए।
1: सो इस सेक्शन पे इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ डिजिटल गैलरी, तो यहाँ पे आपको मेजर खाटिंग की आवाज़ सुनाई देगी। तो वो 1985 पे, उनके मृत्यु के 5 साल पहले, वो तवांग फिर आए थे तवांग की कंडीशन चेक करने के लिए, तभी उन्होंने आकाशवाणी तवांग जो है वहाँ पर उन्होंने एक इंटरव्यू दी थी। तो उसी इंटरव्यू के बदौलत हम, ऑल थैंक्स टू आकाशवाणी तवांग, हम उनकी आवाज़ आज सुन पा रहे हैं, बिकॉज प्रायर टू दिस उनकी कोई रिकॉर्डिंग, ऑडियो वीडियो कुछ मौजूद नहीं थी। तो इट्स ऑल थैंक्स टू आकाशवाणी तवांग, वी आर एबल टू लिसन टू हिज वॉइस राइट हियर इन द म्यूजियम। एंड आफ्टर आप उनकी आवाज़ सुनेंगे, फिर आपको फ्लैग इन, प्लान द फ्लैग वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सो हमने प्लान द फ्लैग इसीलिए बनाया था बिकॉज उन्होंने तवांग को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर झंडा, हमारा इंडियन फ्लैग गाड़ कर ही उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया था यहाँ पर तवांग पर। तो हम हमारे विजिटर्स को वही सेम फीलिंग, जब मेजर खाटिंग ने झंडा प्लांट किया था तो वो सेम फीलिंग हम उनको देना चाहते थे, उसी वजह से हमने ये सेक्शन प्लान द फ्लैग बनाया है, जहाँ पर आप अपना खुद का झंडा गाड़ कर वो सेम फीलिंग शेयर कर सकते। फिर तो अभी हम टूवर्ड्स द एंड आ चुके हैं, तो आफ्टर प्लान द फ्लैग आपको पिक्चर ऑफ यूनिटी देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप सरदार पटेल एंड मेजर खाटिंग, जो 2 ग्रेट पर्सनैलिटीज है जिसके वजह से हम यहाँ तवांग पर खड़े हैं, एंड इट्स पार्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप उन दोनों के साथ भी फोटो ले सकते हैं। एंड लास्टली हम फिर एंट्री फॉयर पर ही आ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर आपको एक कोट भी देखने को मिलेगा, तो वो सेम आकाशवाणी तवांग, वही सेम 1985 इंटरव्यू की है, जहाँ उन्हें इंटरव्यूअर ने पूछा था कि आप जो यूथ्स ऑफ तवांग हैं उनके लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहते हैं, तो आपको वो कोट दिखेगा जो मेजर खाटिंग यहाँ के यूथ्स के लिए छोड़कर

0: गए थे।
1: जैसे कि सनली जी ने म्यूजियम के अंदर चलते चलते हमें इस म्यूजियम की विशेषताएं के बारे में बताएं, तो हमें काफी अच्छे लगे इस बारे में जानते हुए। और अब हम वापस एक बार प्रवेश द्वार के सामने पहुंच चुके हैं, लेकिन अब हम यहां से अभी जा नहीं रहे हैं, बल्कि हमें कुछ और सेक्शन के बारे में और जानने हैं, क्योंकि हमारे अभी गैलरी गाइड लोबसांग छिकी जी से मुलाकात करनी तो बाकी है। तो जी हाँ, हम अब लोबसांग छिकी जी से मुलाकात कर रहे हैं, यहाँ के गैलरी गाइड। तो लोबसांग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे मेडल्स रखे हुए हैं, जिसे मेडल सेक्शन कहते हैं, तो इन मेडल्स के क्या विशेषता है, आप हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: ये सेक्शन जो उनका मेडल सेक्शन है, लाइक वो कुछ गिना चुना इंसानों में से था जिनको दोनों गवर्नमेंट से मेडल मिला था, ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी मिला था और इंडियन गवर्नमेंट से भी मिला था। ये उनका फर्स्ट मेडल है, मिलिट्री क्रॉस मेडल, और इनको रिसीव किया था 1944 में, और इसको दिया गया था ब्रिटिश एम्पायर ने। और उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था। और उनका वर्मा स्टार मेडल है, उनको इंडियन इंडिपेंडेंस मेडल मिला है, उनको पद्मश्री मिला है, और उनको पद्मश्री मिला है 1957 को, और उनको अरुणाचल रत्न भी मिला है। उनको अरुणाचल रत्न मिला है इन 2020-21, और वो दूसरा इंसान था जिनको अरुणाचल रत्न मिला। और फ्रॉम 1987 टू 2020-25 अभी तक में सिर्फ तीन ही को मेडल मिला है, और वो दूसरा इंसान है। तो आप यहाँ पे आएंगे तो आपको उनका अचीवमेंट सब यहाँ पे आप देख सकते हैं और उनका आवाज सुन सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप यहीं पे उन्हीं के सामने बैठे हो, उन्हीं का आवाज सुन रहे हो।
1: हम आगे बढ़ते हुए अब इस सेक्शन में पहुंच चुके हैं जिसके नाम है 1962 द वैलियंट वॉरियर्स। इस बारे में फिर हम चुकी जी आपसे जानेंगे, इस बारे में आप हमें बताएं।
2: ये जो सेक्शन है वो 1962 वार के ऊपर में बेस्ड है, और जैसे कि आप सभी को मालूम है 1962 में इंडिया में वार हुआ था, वो दो साइड से, एक अक्साई चीन और एक तवांग से। और तवांग में उन्होंने असम तक पूरा चाइनीज आर्मी चले गए थे, पर जो अक्साई चीन है वहाँ पे उन्होंने 2400 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा उन्होंने कैप्चर कर लिया था, और वो अभी भी उन्हीं के अंदर में है। और यहाँ पे एक पर्सन है, उसका नाम है नीलम टीपी, वो पूरे अरुणाचल से वो अकेला ही था जिन्होंने 1962 वार में हिस्सा लिया था। ये निशी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। और अगर आप यहाँ पे 1962 गैलरी में आते हो तो आपको यहाँ के 1962 वार के ऊपर में उनके बैकग्राउंड के बारे में सब पढ़ने को मिलेगा, न्यूज कवरेज को देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे उन्होंने कौन से एरिया से उन्होंने तवांग में एंटर किया था वो सब मैपिंग देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे 1962 वार में जितने भी गन्स वेपन्स यूज हुआ है वो सब आपको ओरिजिनल देखने मिलेगा। और 1962 वार में जो शहीद हुए थे और उनको जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला है, उन सभी को आपको देखने मिलेगा ये गैलरी में, और शहीदों के नाम। और यहाँ पे कुछ मूवीज है जो 1962 वार के ऊपर में बेस्ड है, और कुछ बुक्स जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। और यहाँ पे रेजिमेंट्स है जिन्होंने 1962 वार में पार्टिसिपेट किया, उनका सिंबल है। और यहाँ पे 56 रेजिमेंट ने 1962 वार में पार्टिसिपेट किया था।
1: जी, तो अब हम एक बार फिर द लैंड ऑफ मोनपास के सेक्शन में पहुंच चुके हैं। तो इसकी जो डिजिटल सेक्शन है, इस बारे में हमें सनली जी ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि छिकी जी आप हमें एक बार फिर यहां पर रखे गए आर्टिफैक्ट्स है, कपड़े है पुराने जमाने के, और बुद्धिज्म के इतिहास है, तो इन सभी चीजों के बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: जैसे कि 1951 में मेजर बॉब खातिंग यहाँ आए, उन्होंने तवांग को इंडिया के साथ मर्ज किया, और उसके बाद 1962 का वार जो जवान इतने शहीद हो गए, और ये सब किसके लिए, क्योंकि ये हमारे जो यहाँ तवांग के जो लोकल है, यहाँ पे जो ट्राइब पाया जाता है मोनपा, उनके लिए, उनका कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, उन यहाँ के मोनपा पीपल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमारा यही मोटिव है कि यहाँ पे जो टूरिस्ट आए उनको दिखाए कि हमारा पहले कल्चर क्या हुआ करता था, यहाँ के लोकल जो है, यहाँ के लोग है जो क्या पहना करते थे, क्या चीजें यूज किया करते थे, और जो यहाँ के हमारे यहाँ के जो इवन लोकल से अगर वो भी यहाँ आते तो उनको अपना ट्रेडिशन को देखने को मिलता है, जो कुछ कुछ यहाँ पे ऐसा चीज है जो अभी सभी जगह में पाया नहीं जाता है, और कुछ ऐसा चीज है जो जिन्होंने यहाँ के जो अभी यूथ है उन्होंने कभी देखा नहीं होगा, तो वो सब यहाँ पे

0: दिखाया गया, जैसे कि यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस है, यहाँ पे जैसे कि लेदर बैग है, और यहाँ पे जो कॉइन है जो पहले यूज हुआ करता था, यहाँ पे वेट मशीन है जो पहले यूज हुआ करता था, स्टोरेज बॉक्स जो अंदर से बैम्बू से बना होता है और बाहर से उसको स्किन से कवर रहता है, और यहाँ पे लोकल हाउस को 3D पेंटिंग में भी दिखाया गया है कि यहाँ पे लोकल घर कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे हैंडक्राफ्ट कैसे हुआ करता है, तो ये सब यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे VR भी है, वर्चुअल रियलिटी, तो ये ऐसा है कि यहाँ पे आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ये ऐसा मोनेस्ट्री का व्यू कैप्चर किया है जहाँ पे टूरिस्ट इजीली नहीं पहुँच पाते या उनके टूर में वो कवर कर नहीं पाते, और कुछ ऐसा जगह है जैसे कि क्रोमतिन गोंदपा जहाँ पे गाड़ी नहीं पहुँच पाता है और वहाँ पे चल के जाना पड़ता है, तो आपको यहाँ पे ही बैठ के उसको जैसे कि आप वहीं पे हो ऐसा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब दिखाया गया है, और इवन यहाँ पे हमारा कल्चर जो हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वो सब बताया गया है, यहाँ पे लिखा गया है, और जितने भी हमारे यहाँ के 7th century से जैसे कि मेराकलामा लोटे ग्याजो उनके बारे में, मेराकलामा लोटे ग्याजो जैसे कि तवांग मोनेस्ट्री बनाए उनके बारे में बताया गया है, जैसे कि 7th century में केप कलावांपो थे उनके बारे में लिखा गया है, गुरु पद्मा समावा के बारे में लिखा गया है, बुद्धिज्म कैसे आए और बुद्धिज्म से पहले हम क्या प्रैक्टिस करते थे, और यहाँ पे हम ये सब अपना जो मोनपा का कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो सब यहाँ पे शो किया गया है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका
2: जी। तो आज हम आकाशवाणी तवांग की टीम यहाँ मेजर बॉब खाटिंग की वीरता का संग्रहालय में आने के बाद, यहाँ सारी चीज़ों को देखने के बाद और आप दोनों से मिलकर बातें करने के बाद हमें ये समझ में आती है कि मेजर खाटिंग ने तवांग को भारत में शामिल करने में कितने कठिनाइयों का सामना किया और उनके कितने बड़े योगदान हमारे लिए रहे हैं, और उन्हीं के मेहनत के बदौलत आज हम अपने आप को पूरे गर्व के साथ ये कहते हैं कि हम भारत के सबसे सुंदर जिला में से एक तवांग से हैं, और साथ साथ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि उनके मेहनत, उनके परिश्रम, उनके योगदान को हमेशा के लिए याद रखना है, और उनके सारे चीजें, उनके सारे यादें इस म्यूजियम में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, और हम तवांग वासी मेजर खाटिंग को हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। धन्यवाद।
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना मेजर रालिंगनो बॉब खाटिंग म्यूजियम ऑफ वैलियर के म्यूजियम कोऑर्डिनेटर मिस संदली लेगुम सिंफो और गैलरी गाइड मिस लुपसांग छेकी से संग्रहालय और इसके महत्व पर हुए एक साक्षात्कार। इसी के साथ साप्ताहिक कार्यक्रम महिला मंच यहीं समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:51 हुए हैं। श्रोताओं, हमारे अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एक जरूरी संदेश।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: चलिए श्रोताओं, अब आरंभ करते हैं आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों के कार्यक्रम गीत मंजरे को। लीजिए पहला नगमा गीत मंजरे कार्यक्रम का। प्रस्तुत है अमर प्रेम की प्रेम कहानी फिल्म से अरिजीत सिंह के आवाज में। गीत के बोल है कुणाल वर्मा के और संगीत प्रसाद एस का।

साथियों, कार्यक्रम गीत मंजरी का दूसरा नगमा पेश है स्त्री टू फिल्म से वरुण जैन, शिल्पा राव और सचिन जिगर के आवाजों में। गीत को शब्दबद्ध किया है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीतबद्ध सचिन जिगर ने।

श्रोताओं, अगला नगमा हमने चुना है महाराज फिल्म से, जो कि है मुनाली ठाकुर के आवाज में। इस गीत को शब्दों में पिरोया है कौशल मुनीर ने और संगीत से सवारा है सुहेल सेन ने।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया सूरमा फिल्म से दिलजीत दोसांझ की आवाज में एक बेहद खूबसूरत से गीत का, जिसे रचा है गुलजार ने और संगीत से सवारा है शंकर एहसान लोई ने। जी हाँ, इस वक्त हम आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत मंजरी के तहत चंद आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों का, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। तो आइए इन खूबसूरत नगमों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं खेल खेल में फिल्म से विशाल मिश्रा और जहरन एस खान की आवाज में एक गीत, जिसे शब्दों में पिरोया है कुमार ने और संगीत से सवारा है तनिष्क बागची ने।

श्रोताओं, अगला नगमा प्रस्तुत है अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो के आवाजों में, जिसे रचा है जलीस राशिद ने और संगीत से सवारा है साजिद वाजिद ने, और यह गीत हमने चुना है क्या यही प्यार है फिल्म से।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया सैयारा फिल्म से विशाल मिश्रा और हंसिका पारेख की आवाज में एक गीत का, जिसे रचा है राजशेखर ने और संगीत से सवारा है विशाल मिश्रा ने। आइए अब सुनते हैं गीत मंजरी कार्यक्रम का अंतिम नगमा, बागी फोर फिल्म से जॉश ब्रार और परंपरा टंडन के आवाजों में। गीत के बोल है कुमार जयदीप वारिंग और जॉश ब्रार के, तथा संगीत आगास का।

0: श्रोताओं, इन्हीं आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों के साथ ही कार्यक्रम गीत मंजरी अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है, जिसका प्रसारण किया जा रहा है मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़, साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय संध्या के 4:30 हुए हैं। श्रोताओं, हमारे अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं आरबीआई द्वारा जारी एक जरूरी संदेश।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: चलिए श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग रंग का। इस कार्यक्रम के तहत आज पेश है वीजी जोग से वायलिन वादन। राग है श्याम कल्याण तथा तबले पर संगत दे रहे हैं श्याम बोस।

0: जोक से वायलिन वादन का। इसी के साथ शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग रंग समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 4:45 होने वाले हैं। श्रोताओं, अब से चंद ही पलों में सुनिए आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्रवाई विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। अरुणाचल प्रदेश स्थित रिवर्स के आरोग्य पंचक्रम आधारित वेलनेस सेंटर द्वारा लोअर दिबांग वैली जिले के अवांगो और हरुपहार गाँव में 2 मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिला एवं लिंक्योंग जिला प्रशासन द्वारा अपने अपने जिलों में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की जेम्स ऑफ इंडिया क्रिएटर्स पहल का जिला स्तरीय शुभारंभ एवं प्रदर्शन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। गोल्डन जुबली बैंक्वेट हॉल ईटानगर में अरुणाचल इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन AEDMA कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन। कोलोरियांग स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण पर जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। और भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा एथलेटिक्स में इतिहास रचा। पुरुषों की 100 मीटर T47 फाइनल में दिलीप महादू काफ्ती और नेस्वर्ण और मोहम्मद बालिस मार्सिंगनाथन ने रजत पदक जीतकर भारत के लिए ऐतिहासिक 1-2 फिनिश हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को सदन में पेश किया। लोकसभा ने कल लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक पारित कर दिया था।
2: परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए यह विधेयक संसद में लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने का प्रावधान है, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है।
1: इससे पहले शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित कर दिया गया। दिन में 11 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा है कि सदन की कार्रवाई में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
3: मैंने कई बार सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है, प्रश्नकाल माननीय सदस्य का अधिकार है और प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। मैंने ये आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति

0: वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया।
1: अरुणाचल प्रदेश स्थित रिवर्स के आरोग्य पंचक्रम आधारित वेलनेस सेंटर द्वारा गत 27 और 29 जुलाई को लोअर दिबांग वैली जिले के आबांगो और हरोपहाड़ गांव में दो मुफ्त मेडिकल कैंप सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। ये कैंप सेंटर की उस पहल का हिस्सा थे जिसके तहत जिले के दूर दराज और सुविधाओं से वंचित समुदायों तक क्वालिटी हेल्थ केयर और आयुर्वेदिक वेलनेस सेवाएं पहुंचाई जा रही है। रिवाज आरोग्य सेंटर के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर तेची युमये ने उनके और टीम ने देखरेख में आयोजित इन दोनों कैंप में कुल 39 मरीजों का इलाज किया गया और कुल 50 लोगों ने इस सेशन में हिस्सा लिया। चांगलांग जिला प्रशासन एवं विंग्योंग जिला प्रशासन द्वारा अपने अपने जिलों में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की जेम्स ऑफ इंडिया क्रिएटर्स पहल का जिला स्तरीय शुभारंभ एवं प्रदर्शन उपायुक्त कार्यालय चांगलांग एवं विंग्योंग में सफलतापूर्वक आयोजित किया, जिसमें जिले भर के कंटेंट क्रिएटर्स और अन्य रचनात्मक प्रतिभाओं के उत्साहपूर्वक भाग लिया गया। इस दौरान माई वेब्स प्लेटफॉर्म का लाइव प्रदर्शन भी किया गया है। गोल्डन जुबली बैंक्वेट हॉल ईटानगर में अरुणाचल इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन AETMA कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया। तकनीकी सत्रों में डिजिटल मीडिया एंड सिटीजन एम्पावरमेंट हु शेप्स द नैरेटिव इन द इंफॉर्मेशन एज तथा मीडिया फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग विदाउट फियर एंड फेवर जैसे विषयों पर चर्चा का विषय विमर्श किया गया, जिसमें वरिष्ठ पत्रकारों, ब्यूरोक्रेट्स और राजनेताओं ने पैनलिस्ट के तौर पर भाग लिया। कोलोरियांग स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण पर जागरूकता अभियान आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों और विद्यालय कर्मियों को सर्वाइकल कैंसर तथा HPV से संबंधित अन्य बीमारियों की रोकथाम में HPV टीकों के महत्व के बारे में जागरूक करना था। सत्र के दौरान प्रतिभागियों को टीकाकरण के लाभ, सुरक्षा और समय पर टीका लगवाने के महत्व की जानकारी भी दी गई तथा टीकाकरण कार्यक्रम में अधिक जन जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी के लिए किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में INSSV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान की महिला टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
2: आपने इस अभियान से मैं कह सकता हूँ कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का क्रूर हमला जारी है। इसमें 40 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने प्रदर्शनकारी वर्तमान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की क्रूरता और लक्षित हत्याओं को लेकर रावलकोट के दी चौक पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मानवाधिकार संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से पाकिस्तानी बलों द्वारा घातक गोलीबारी की घटनाओं में क्षेप करने की अपील की गई है। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा एथलेटिक्स में इतिहास रच दिया है। पुरुषों की 100 मीटर T47 फाइनल में दिलीप माहूद तथा स्वर्ण और मोहम्मद अबालिस मरसिंगनाकाथ ने रजत पदक जीतकर भारत के लिए ऐतिहासिक 1-2 फिनिश हासिल किया है। ये पदक भारत के लिए उस दिन के तीसरे और चौथे मेडल थे। इससे पहले लॉन्ग जंपर मुरली श्री शंकर ने पुरुषों की लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीतकर भारत का खाता खोला था। इन मेडलों की बदौलत भारतीय स्टैंडिंग में 8वें स्थान पर पहुंच गया है और उसके कुल मेडलों की संख्या 15 हो गई है, जिसमें 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल है। झारखंड देवघर में आज से श्रावणी मेला शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: सावन के पहले दिन ही देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में लाखों शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पूरी बाबा नगरी बोलबम के अटूट विश्वास और केसरिया रंग में रंग गई। सुरक्षा के मोर्चे पर इस बार तीसरी आंख के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों का पहरा है। कांवरियों के पैरों को थकान न मिले इसके लिए नए फुट ओवर ब्रिज से लगातार सुगम जलार्पण कराया जा रहा है, जबकि पूरे कांवरिया पथ पर ठंडे पानी की फुहारें, भव्य टेंट सिटी और निःशुल्क चिकित्सा शिविर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी जापान के कुमामोटो इलाके में इस मंगलवार को आए जबरदस्त भूकंप से मरने वालों की संख्या 28 हो गई है। बचाव कर्मी अभी भी बचाव हुए लोगों

सुझे चिदी ची डो कक छाले बनंग गोचो नाऊ कपचे खपते सोबक थुमे भाषी लपटू नंग मोलो प्रोटेस्ट यपचे पुलिस भाषी लेगा मृकुगु बेदंक वंगचिचित थैया लेके यगु इन गेंग्स खपते या जो लन्यांबुर खपते थुमे भाषी उस नेतुन चगा उई नांसे लुंचन कुशब अमिश्या बेनाई रैया ड्रेसो नेंगा मत से गुसु गेथिम हिन नेक्स नांबुर सुप्रीम कोर्ट से उई जुंशल नीट पेपर लीक डंजन को कुर जंतर मंतर का लोगडू बाग प्रोटेस मोलो यगो कबचे नौ रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ कुक लक्ष्य बनांग बेजे थोयुक रिकॉर्ड चित दाया नियुक का नवंबर सुप्रीम कोर्ट से ट्रिम्क डेडी यक्तंक नेदंगा थपशी आयुक थोका पेलेट गन मेमदा बेजे थोंदो चित कक्तम आयुक ऑर्डर कफिप नापचे लेकुंसी नंगा पुलिस चल नेखा चुपचों सुगु नौ कंसम चे पेलेट गन मेमदा बेजे थोंग छुगु नंबर नेक्स्ट नंबर चीफ जस्टिस सूर्यकांत निंग जस्टिस जोय मल्या बागची निंग जस्टिस वी महाना कुक बेंच सी दिल्ली शुंगशल लुप्टुनंग प्रोटेस्ट छल यक्तंग कपचे पेलेट नैया नटपा शुंगन मी भाषल मन खा मंजु नमदा या क्वेट निक्स कफ बुम्बुर गदे बिहार गुजरात निंग मध्य प्रदेश का असेंबली कंस्टिट्यूंसी सकुंग सुमा देश विधानसभा वशो थोका वोटपोत नंबर गदे बिहार का बंकीपुर सकुंग गदे गुजरात का मंजलपुर सकुंग निंग गदे मध्य प्रदेश का दातिया सकुंगा वोट पोत नवंबर मोक्संगिर गुमसी निशुल बिदंगा उच सकुंग सुमा वैशोचित जीदे निंग थामंगुलों मुनु निंगा रेयुक जे ओडम लेखुंसी डेडी नंबर दापा नवो नंबर न्यूस नवनी ग्यावर नमशी लेखुंग सी गदे महाराष्ट्र तेलंगाना सने विदर्भ निंग मध्य प्रदेश गदे नुपछोगा देश नामथिम सोमक न्यंगा नुलितिन्या लेखुंसी रेड अलर्ट कब नवंबर मुख संगीर गुमसी निशुल नंगा गदे अरुणाचल प्रदेश केरला सने माहे निंग गदे राजस्थान काये शुभ प्लंग नई चेसक नम थेमचो ब्रुदिर सयालु कमे थेमक नौक निशुल बिजुम्बुर एस्कोश जूनियर टीम चैंपियनशिप कग चम तेंदुलका ग्यागर्क फुबुजाक टीम सी इंग्लैंड शेल अंगी खडंग पॉइंट नई थी सी शुरुआतिया सेमीफाइनल तेंदुलका ओम्बुर उच तेंदुलचो तंग कैनरा कग सने ओंटारियो का शनम्बुर जगह टीम कुक युग तेंदुरचित यूनाइटेड स्टेट्स नंबा शेन्युकिम्बुर संगीन उद्देव का देशिक निचुल खा जनशो सुजुबानो दोस संगीनोंदा उजु जुचे दुंडक लेरिम डेंगडिक समझित कुजुदुर देश उद्लेरिमा नदा बुलोपसंसी युरु डेंगडिक समा सन्नासा

랑이랑다 오직 요지 다시 들은 시 미로 댕득 섬 하산 낭사

मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज, साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:11 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा के तहत सबसे पहले सुनिए दो जरूरी सूचनाएं। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान होने वाली वर्षा के कारण कल यानी 31 जुलाई 2026 को सुबह 11:30 तक पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों में अचानक आने वाली भार और भूस्खलन से निम्न से मध्यम स्तर का खतरा रहने की संभावना जताई जा रही है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग, वेस्ट कमिंग, ईस्ट कमिंग, अपर सुबनसिरी, अंजाव, दिबांग वैली, तिरप और चंगलंग जिलों में फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की आशंका है। अतः तवांग जिले के सभी नागरिकों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी जा रही है। विशेषकर नदी नालों के सामने, निचले इलाकों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है, तथा सभी से अपील है कि मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत जिला प्रशासन से संपर्क करें। मौसम संबंधी सूचना समाप्त हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी जिट्रो से तावंग के कार्यालय से प्राप्त परिपत्र अनुसार सभी तावंग वासियों एवं श्रोताओं को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2026 की निर्वाचन नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के दौरान अनमैप्ड श्रेणी तथा चिन्हित त्रुटियों वाले मतदाताओं की सुनवाई निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। सभी सुनवाई प्रातः 9:30 से संबंधित कार्यालयों में होगी। तावंग क्षेत्र में 4 अगस्त 2026 को 3 सेरू एवं 1 शोबुर पोलिंग स्टेशन के मतदाताओं की सुनवाई उपायुक्त कार्यालय तावंग में, 5 अगस्त 2026 को 15 क्राफ्ट सेंटर, 5 मुचुत तथा 3 सेरू पोलिंग स्टेशन के मतदाताओं की सुनवाई उपायुक्त कार्यालय तावंग में, 6 अगस्त 2026 को 8 बोम्बा तथा 4 संप्रंग पोलिंग स्टेशन उपायुक्त कार्यालय तवांग, 7 अगस्त 2026 को 8 बोम्बा एवं 7 बुमतंग पोलिंग स्टेशन उपायुक्त कार्यालय तवांग, 10 अगस्त 2026 को 9 खरतोत, 6 तेली एवं 10 खिनमे पोलिंग स्टेशन उपायुक्त कार्यालय तवांग, 11 अगस्त 2026 को 9 खरतोत, 11 तवांग गुनपा एवं 13 मंडरेलिंग पोलिंग स्टेशन उपायुक्त कार्यालय तवांग, 12 अगस्त 2026 को 12 शो एवं 2 शोरबी पोलिंग स्टेशन उपायुक्त कार्यालय तवांग, 13 अगस्त 2026 को 12 शो एवं 17 इंजीनियरिंग कॉलोनी पोलिंग स्टेशन उपायुक्त कार्यालय तवांग, 14 और 17 अगस्त 2026 को 14 हायर सेकेंडरी स्कूल पोलिंग स्टेशन उपायुक्त कार्यालय तवांग, 18 और 19 अगस्त 2026 को 16 टाउन सेकेंडरी स्कूल एवं 18 ककलिंग

स्टेशन उपायुक्त कार्यालय तवंग में आयोजित किए जाएंगे। किटपी क्षेत्र के मतदाताओं के लिए 4 अगस्त 2026 को 19 खुर्दुंग पोलिंग स्टेशन एसी कार्यालय किटपे, 5 अगस्त 2026 को 21 नमित पोलिंग स्टेशन एसी कार्यालय किटपे, 6 अगस्त 2026 को 24 क्रालिंग बक्सर पोलिंग स्टेशन एसी कार्यालय किटपे, 7 अगस्त 2026 को 22 बमदिर पोलिंग स्टेशन एसी कार्यालय किटपे, 10 अगस्त 2026 को 23 ख्रिमू पोलिंग स्टेशन एसी कार्यालय किटपे तथा 11 और 12 अगस्त 2026 को 20 किटपे पोलिंग स्टेशन के मतदाताओं के लिए एसी कार्यालय किटपे में सुनवाई आयोजित की जाएगी। सभी संबंधित मतदाताओं से अनुरोध है कि वे अपने मूल दस्तावेज एवं उनकी फोटोकॉपी के साथ निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित हों। आवश्यक दस्तावेजों का विवरण संबंधित बीएलओ द्वारा दिए गए सूचना पत्र में उपलब्ध है। सूचनाएं समाप्त हुए। श्रोताओं, कार्यक्रम जरोखा के तहत चलिए अब हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों से। अब से थोड़ी देर यानी संध्या के 6:20 पर शेदुम लेरिम के तहत सुनिए तावंग लकर अमाचोपा के तंजिन छुंजुम और साथियों से चंद शेदुम। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार आज शाम 7 बजे, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। 7:10 पर कार्यक्रम आज की कविता। साप्ताहिक कार्यक्रम एक और अनेक आज शाम 7:11 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार आज शाम 7:45 पर, तत्पश्चात रीजनल न्यूज 7:50 पर। 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत के तहत आनंद लीजिए लता मंगेशकर के स्वर में एक गीत का। आपकी वचन फरमाइशों पर आधारित सदाबहार पुराने नगमों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत आज रात्रि 8 बजे। आज रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9। आज रात्रि 9:15 पर हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले चंद कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण के साथ रात्रि 9:16 पर आज के तमाम कार्यक्रम समाप्त होंगे। श्रोताओं, अभी आपने सुना दो जरूरी सूचनाएं तथा हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। इन्हीं सूचनाओं और कार्यक्रम संबंधी जानकारियों के साथ कार्यक्रम जरोखा यहीं समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:20 होने वाले हैं। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम शेदुन लेरिम सुनिए चंद ही पलों में। कृपया हमारे साथ बने रहें।

आकाशवाणी तवांग लंगे छमा नबदु छुजे ग्रो कुन कलम खेलोनी द शेदन लिरिम चित को चुदुर देश उद लिरिमा तवांग लकर आम चोपक छोकमी तेंजन छुंजुम श्री क्रिस्टोनु गंजक सुंबा क्याब्रो मंडल केवे जप्तन गंगलोमा ड्रमा शिरप न्यूपो तुंगवा तुंगवा शापा चिशा मामे सोनम दंसिक मुलाम निंग ओवा सन्नासा

예수 이름과 삼무시병에 내기받은 기도제와다 기받아 예수 이름과 미개와 주 리기 남양당과 남바다 슈바다

0: Lengi nang data shedun leri ma tabang lakar amu sopak sombi tenzin zonzon psi kristonu kinchak sumba kyabdro mandil kyabwe jabdin dangloma dhulma shirab nyugbo tungba shabba jisha mamisonam lenzik malam ningowa sanangobur Lengi nang uddebka agashwane tabang desh nubdek manpak lerim banang Chatang Dito, Uch Agashwane Tawang Yimbur, Tangye Sangma Nuptuk Suzani Songdur. Da Uchuk Juji, Agashwane Delike, Jile Yashisu, Na Himbige Sengyur, Ejik Juji, Suze, Nisukunkam Lianji, Injige Sengyur San Nasa.
1: Namaskar, Akashwani Samachar ke saath, main Sir Firozi. संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
2: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए

0: संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
1: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा जारी है। लोकसभा ने ये विधेयक कल पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। चर्चा के लिए 7 घंटे आवंटित किए गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये विधेयक देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं और उन पर विचार करूंगा।
2: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्य की सहायता करना जारी रखेगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लगभग 17,000 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सेठ ने बताया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने बताया कि वायुसेना SIDM उद्योग और स्टार्टअप समुदाय 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि ये वर्ष भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया है। शाम 5 बजे तक बांकीपुर और मंजलपुर में लगभग 34% और दतिया में 69% से अधिक मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बतूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बतूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। फिदाइन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकवादियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने आज राष्ट्रमंडल खेलों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: dreams and nightmares, fulfillment and disappointment. And like a theater where acts and roles may swear, we dance to the twists and turns with each passing day. Through valleys deep and mountain high, through the sun and the stormy sky, we sail towards a horizon filled with lifestyle. Sometimes adrift on a path of joy and other times restrained from the silence of solitude to the crowd's embrace, life's rhythm echoes in every heart space. So cherish every heartbeat and every breath, embrace every moment and every depth. Course through the changing seasons and twilight hush in each laughter's echo and silent tears. Life is a tale etched on the fabric of our beating heart. The poet's name is Dorothy Osquey. Thank you.
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना एलडी स्कॉलर्स होम के पांचवी कक्षा के छात्र टाशी वाइजर से अंग्रेजी भाषा की कविता लाइफ। इसी के साथ ही कार्यक्रम आज की कविता यहीं समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:12 हुए हैं। श्रोताओं, हमारे अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले सुनिए एक जरूरी सूचना। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान होने वाली वर्षा के कारण कल यानी 31 जुलाई 2026 को सुबह 11:30 तक पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों में अचानक आने वाली भार और भूस्खलन से निम्न से मध्यम स्तर का खतरा रहने की संभावना जताई गई है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग, वेस्ट कमेंग, ईस्ट कमेंग, अपर सुबनसिरी, अंजाव, दिबांग वैली, तिरप और चंगलंग जिलों में फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की आशंका है। अतः तवांग जिले के सभी नागरिकों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी जा रही है। विशेषकर नदी नालों के सामने निचले इलाकों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है, तथा सभी से अपील है कि मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत जिला प्रशासन से संपर्क करें। मौसम संबंधी सूचना समाप्त हुआ। तो चलिए श्रोताओं, अब आरंभ करते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम एक और अनेक को, जिसके तहत आज हम आनंद लेंगे गायक आतिफ असलम और अन्य कलाकारों के आवाजों में चंद आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों का। तो लीजिए पहला नगमा प्रस्तुत है आतिफ असलम और अलका याग्निक के आवाजों में किस्मत कनेक्शन फिल्म से, जिसे रचा है सैयद कादरी ने और संगीत से सवारा है प्रीतम ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का दूसरा नगमा प्रस्तुत है लैला मजनू फिल्म से आतिफ असलम और ज्योतिका टंगरी के आवाजों में। इस गीत को शब्दबद्ध किया है इरशाद कामिल ने और संगीतबद्ध जॉय बारुआ ने।

0: श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया आतिफ असलम और श्रेया घोषाल के आवाजों में रमैया वस्तावैया फिल्म का एक गीत, जिसे रचा है प्रिया पंचाल ने और संगीत से सवारा है सचिन जिगर ने। श्रोताओं, इस वक्त हम आनंद ले रहे हैं साप्ताहिक कार्यक्रम एक और अनेक के तहत गायक आतिफ असलम और अन्य कलाकारों के आवाजों में चंद आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों का। चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले सुनते हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा जारी एक जरूरी संदेश।
1: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
2: हम बुजुर्ग पहले जब बीमार पड़ते थे तो सबसे बड़ी तकलीफ होती थी अपनों पर बोझ बन जाने की, खर्चों की फिक्र से अपनी बीमारी ही छुपा लेते थे, लगता था ऐसे ही चलेगा। पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की हमारी चिंता और हमें भी दी आयुष्मान की गारंटी, आयुष्मान वह वंदना कार्ड से। आज 70 साल और उससे अधिक आयु के हम जैसे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के हकदार।
3: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे आयुष्मान वह वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
0: तो चलिए साथियों, कार्यक्रम एक और अनेक को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आतिफ असलम का अगला नगमा एंटरटेनमेंट फिल्म से, जिसे रचा है प्रिया पंचाल ने और संगीत से सवारा है सचिन जिगर ने, तथा इस गीत को आतिफ असलम के साथ स्वर दे रही हैं शालमली खोलगरे।

तेरे नाल लव हो गया फिल्म से आनंद लीजिए। अगले नगमे का आतिफ असलम, मोनाली ठाकुर और प्रिया पंचाल के आवाजों में। गीत के बोल है मयूरपुरी के और संगीत सचिन जिगर का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम नगमा प्रस्तुत है सत्यमेव जयते फिल्म से आतिफ असलम और तुलसी कुमार के आवाजों में। गीत को रचा है कुमार ने और संगीत से सवारा है रोचक कोहली ने।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया आतिफ असलम और अन्य कलाकारों के आवाजों में चंद आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों का। इन्हीं नगमों के साथ ही साप्ताहिक कार्यक्रम एक और अनेक अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:45 होने वाले हैं। श्रोताओं, अब से चंद ही पलों में सुनिए आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात रीजनल न्यूज 7:50 पर। कृपया हमारे साथ बने रहे।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि सांसदों से दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्य की सहायता करना जारी रखेगी। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित लोगों के कुशल मंगल और सुरक्षित रहने की भी कामना की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि सांसदों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने उन्हें बाढ़ की स्थिति पर समुचित और समयबद्ध कार्रवाई का आश्वासन दिया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक रिटायर्ड ने विकसित भारत के लिए नशामुक्त युवा विषय पर आयोजित वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थानों, परिवारों, स्वास्थ्य कर्मियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों तथा नागरिक समाज से नशामुक्त युवा के निर्माण के लिए मिलकर कार्य करने का

0: आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नशे के विरुद्ध लड़ाई की शुरुआत प्रत्येक व्यक्ति से होना चाहिए और इस आंदोलन को जन रूप देना चाहिए। इस सम्मेलन में सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति, स्वास्थ्य शिक्षा, खेल एवं युवा मामले, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता तथा जनजातीय मामलों के विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक तथा रेडक्रॉस के स्वयंसेवक शामिल हुए। राज्यपाल ने कहा है कि मादक पदार्थों का दुरुपयोग केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि शिक्षा, उत्पादकता, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्र विकास के लिए भी गंभीर खतरा बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि नशा मुक्त भारत का अर्थ केवल नशीले पदार्थों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन शैली, जागरूक निर्णय, सहयोगी परिवारों और सशक्त समुदायों को बढ़ावा देना भी है। उन्होंने नशे की समस्या से निपटने के लिए व्यापक रणनीतिक अपनाने पर बल दिया है, जिसमें रोकथाम एवं जन जागरूकता, प्रभावी नागरिकी और जनसंपर्क के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा नशा मुक्त हो चुके लोगों के लिए कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें समाज में सम्मानपूर्वक पुनर्स्थापन करने के विशेष जोर दिया गया। राज्य के व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री न्यातो दुकान ने आज नामपोंग स्थित बांगसुपास में भारतीय म्यांमार सीमा हाट के पुनः संचालन का औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री दुकाम ने कहा है कि व्यापार और वाणिज्यिक क्षेत्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने स्थानीय समुदायों, व्यापारियों तथा प्रशासन सहित सभी हितधारकों से सक्रिय भागीदारी निभाने और व्यापार को दैनिक जीवन का सशक्त एवं टिकाऊ हिस्सा बनाने का आह्वान भी किया। बांगसुपास के ऐतिहासिक और सामरिक महत्व का उल्लेख करते हुए मंत्री ने स्थानीय आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय व्यापार और संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नामपोंग में शीघ्र ही लैंड पोर्ट स्थापित की जाएगी। तवांग जिले में टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आज उपायुक्त कार्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला टीकाकरण कार्यबल यानी डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स फॉर इम्यूनाइजेशन की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त नामग्याल आंगमो ने स्वास्थ्य विभागों को टीकाकरण की प्रगति, जागरूकता अभियान तेज करने और टीकाकरण से जुड़े मिथकों और भ्रांतियों को दूर करने के लिए समुदायों के साथ सक्रिय संवाद बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि किसी भी पात्र लाभार्थी को गलत धारणाओं के कारण टीकाकरण से वंचित नहीं रहना चाहिए, साथ ही स्वास्थ्य अधिकारियों से उपलब्ध सभी सामुदायिक मंचों का उपयोग कर लोगों को जागरूक करने का आग्रह किया। असम राइफल्स ने आज तिराप जिले के खेती गांव के निकट एक पुल के नीचे गिरे वाहन को सफलतापूर्वक निकालने के लिए त्वरित बचाव अभियान चलाया। घटना की सूचना मिलते ही असम राइफल्स के जवान तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और दुर्गम भूभाग तथा कठिन परिस्थिति के बावजूद सुनियोजित अभियान शुरू किया। जवानों ने उत्कृष्ट टीम वर्क, दृढ़ संकल्प और तकनीकी दक्षता का परिचय देते हुए वाहन को सुरक्षित बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के पांच जिलों तवांग, अपर सुबनसिरी, सियांग, दिबांग वैली और अंजाव को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए येलो, साठी, वेस्ट कमिंग, पापुमपारे, नामसाई और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग, this is Shubhashaji Vattacharjee with Ranjan News. Prime Minister Narendra Modi today met with the members of parliament from Arunachal Pradesh and Nagaland at Parliament House. In a social media post, Mr. Modi said that the discussions focused on the prevailing flood situation in both the states. The Prime Minister said that the central government will keep working with the respective state governments to address the challenges. He also prayed for everyone's well-being and safety. In a social media post, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that during the meeting, the Prime Minister assured them full assistance and provided them with necessary directions for ensuring timely relief, restoration and support for the affected people. Governor Lieutenant General Retired K.T. Panay called upon educational institutions, families, healthcare professionals, law enforcement agencies and civil society to work together in building a Nasha Mukt Yuva, emphasizing that the fight against substance abuse must begin with individuals and evolve into a nationwide people's movement. Addressing a virtual conference on Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat with vice chancellors of government and private universities, cities, senior officers of health, education, sports and youth affairs, social justice and empowerment and tribal

श्रोताओं, आपने आनंद लिया लता मंगेशकर की आवाज में एक देशभक्ति गीत का। इसी के साथ कार्यक्रम देशभक्ति गीत समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बजे हैं, यानी अब वक्त हो चला है कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हम आनंद लेंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश चंद सदाबहार पुराने हिंदी फिल्मी नगमों का। तो चलिए कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत आरम्भ करे। पैगुम लोगों के पेमाटाशी तेंदावा नको और पैगुम वासियों के फरमाइश के साथ जो है आए मिलन की रात फिल्म से अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज के आवाजों में। गीत के बोल है समीर के और संगीत आनंद मिलन का।

चिचिंगा बस्ती तावन के छिरिंग श्री छिरिंग के फरमाइश पर प्रस्तुत है दिले नादान फिल्म से कार्यक्रम का दूसरा नगमा तलत मोहम्मद के आवाज में। गीत को शब्दबद्ध किया है शकील बदायानी ने और संगीतबद्ध गुलाम मोहम्मद ने।

शुभम, अभी आपने जिस गीत का आनंद लिया उसे किचंगा तवांग के छिरिंग जी ने समर्पित किया है कलिंग सर को। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला नगमा सुनते हैं जनकपुरी सहारनपुर के जॉन डिकैस्ट्रो, पल डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो के फरमाइश पर, जो है मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से मोहम्मद रफी के आवाज में। गीत को शब्दबद्ध किया है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं आपकी दोबारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश चंद सदाबहार पुराने हिंदी फिल्मी नगमों का हमारे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के तहत, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। तो आइए इस सदाबहार नगमों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं गुनेगार फिल्म से साधना सरगम और कुमार सानू की आवाजों में एक गीत, जिसे रचा है मान सिंह दीप ने और संगीत से सवारा है श्याम सुंदर ने, और इस गीत की फरमाइश हमें प्राप्त हुए हैं हेलम असम के ज्योति।

कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का अंतिम नगमा आइए सुनते हैं लोहगढ़ ठाकुरन वाला फिरोजपुर पंजाब के स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुललाल सिंह, अविराज सिंह, गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह के फरमाइश पर। यह नगमा है रोटी फिल्म का, जिसे रचा है आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने तथा इसे स्वर दिया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी की व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस रोकी महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित या रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। श्रोताओं, आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। अब से चंदी पलों में सुनिए आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा रात्रि 9 बजे न्यूज़ एट 9। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। दिन भर की खेल गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। ये वो कार्यक्रम है जिसमें खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग आपको देखने को मिलती है। आज के संस्करण के साथ मैं हूं अतहर सईद। श्रोताओ, आज भी हम लेकर आए हैं खेल जगत की वो तमाम खबरें, समाचार, सारी अपडेट जिनका आपसे है सरोकार। तो शुरू करते हैं खेलों का ये सफर। सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। राष्ट्रमंडल खेलों की पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भारत ने इतिहास रचते हुए पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में शीर्ष दो स्थान हासिल किए। दिलीप महादू गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मौरसिंह नाकथ ने रजत पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर दिलीप महादू गावित को बधाई दी। राष्ट्रमंडल खेलों में नीरज चोपड़ा पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंचे। विश्व जूनियर स्क्वाश प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष टीम ने लगातार दूसरी बार सेमीफाइनल में जगह बनाई। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया और भारत के दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के पुरुषों की पैरा 100 मीटर T47 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर दिलीप महादू गावित को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एथलीट की गति, दृढ़ संकल्प और लगन ने देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने नया खेल कीर्तिमान बनाने और अपना सीजन बेस्ट प्रदर्शन करने के लिए भी श्री गावित को बधाई दी। श्री मोदी ने इसी स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर मोहम्मद बासिल मौरसिंह नाकत को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि मौरसिंह नाकत की सफलता उनकी कड़ी मेहनत और फोकस को दिखाती है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में इतिहास रचते हुए पुरुषों की

0: मीटर T47 स्पर्धा में शीर्ष दो स्थान हासिल किए। दिलीप महादू गावित ने स्वर्ण पदक और मोहम्मद बासिल मोरसिग नकाथ ने रजत पदक जीता।
1: चलिए फिर दो भारतीय एथलीट्स आपको नजर आएंगे। शुरुआत हो चुकी है इस T47 कैटेगरी की। दो भारतीय एथलीट्स मेडल ले जाएंगे जरूर। ऐतिहासिक पल, गावित को मिला है गोल्ड भारत के लिए। मोहम्मद बासिल दूसरे स्थान में आए हैं। यहाँ भारत ने एक गोल्ड और सिल्वर दोनों ले गए हैं, पूरे हाथ भर लिए।
0: दिलीप ने 10.17 सेकंड के साथ नया रिकॉर्ड और सत्र का अपना सर्वश्रेष्ठ समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं मोहम्मद बासिल ने सत्र के अपने सर्वश्रेष्ठ समय 10.83 सेकंड के साथ रजत पदक अपने नाम किया। इंग्लैंड के केविन सेंटोस ने कांस्य पदक जीता। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में ये भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले मीराबाई चानू ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में और शर्मिला धनकर ने पैरा एथलेटिक्स की महिलाओं की गोला फेंक F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर श्री शंकर को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि श्री शंकर की सफलता कई युवाओं को एथलेटिक्स में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने इन सभी मेडल विजेताओं को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। भारत पदक तालिका में 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स कैन।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोत्साहन पर दिलीप महादू गावित ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।
3: मैं बचपन में पेड़ से गिर गया था, तब वो हाथ कट करना पड़ा। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, पैरा वालों के लिए सपोर्ट करने के लिए। पैरालंपिक वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी स्पोर्ट भी बहुत सपोर्ट करे, हमारे गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है। उस सपोर्ट की वजह से आज हम देश का नाम ऊंचा कर पाए।
2: दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में क्वालिफिकेशन राउंड में शीर्ष 12 में जगह बनाकर पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। नीरज के अलावा रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई। नीरज 5वें जबकि रोहित और यशवीर क्रमशः 9वें और 10वें स्थान पर रहे। इसके साथ ही स्पर्धा में हिस्सा लेने वाला पूरा भारतीय दल पदक दौर में पहुंच गया है। नीरज चोपड़ा ने 2018 में भाला फेंक स्पर्धा का खिताब जीता था। वो क्वालिफिकेशन राउंड में 79.61 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ 5वें स्थान पर रहे, जबकि रोहित यादव 78.37 मीटर और यशवीर सिंह 78.36 मीटर के मीटर से क्रमशः 9वें और 10वें स्थान पर रहे हैं। विशेष मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि नीरज चोपड़ा ने राष्ट्रमंडल खेलों की भाला फेंक स्पर्धा में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, अब क्या उम्मीदें रहेंगी उनके फाइनल में?
4: देखिए अतर, उनसे भाला फेंक में हमेशा से ही उम्मीदें रही हैं, क्योंकि एक ओलंपिक पदक विजेता जब कॉमनवेल्थ या डायमंड लीग जैसी प्रतियोगिताओं में खेलने के लिए आता है तो उम्मीदें काफी बढ़ जाती हैं। नीरज एक स्वर्ण पदक और एक रजत पदक ओलंपिक में पहले भी जीत चुके हैं, जिसमें उन्होंने 87.58 और 89.45 मीटर भाला फेंक कर पदक जीता था। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज नीरज ने सिर्फ 79.61 मीटर भाला फेंका है, जो कि उनके स्टैंडर्ड से काफी कम है।
2: बिल्कुल।
4: लेकिन फिर भी हम उनसे उम्मीद करेंगे कि वो फाइनल में बेहतर प्रदर्शन करें।
2: कई बार होता है खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ जो है वो बचाकर रखता है
4: जी
2: अंतिम मुकाबले के लिए, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए होगी कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के साथ वो गोल्ड मेडल हासिल करेंगे। भारत के लिए रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। विशेष अब भाला फेंक में भारत को एक से अधिक पदक की उम्मीद रहेगी।
4: जी बिल्कुल, एक से अधिक खिलाड़ियों से अब भारत को उम्मीद रहेगी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोहित यादव जो है वो बर्मिंगम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में एक बार पहले भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, जहां पे उन्होंने 6वां स्थान प्राप्त किया था। यशवीर सिंह के लिए यह पहला मौका है जब उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में जो है जगह बनाई है। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि ये दोनों खिलाड़ी इस बड़े मंच पर नीरज चोपड़ा के साथ देश का नाम कैसे रोशन करते हैं।
2: बिल्कुल सही कहा, राष्ट्रमंडल खेलों की ही खबरों को अगर जारी रखें तो विशेष आज कौन कौन सी स्पर्धाएं होना बाकी हैं?
4: जी अभी मार्टिना देवी मालबिना का जो मुकाबला है 87 किलोग्राम में वो अभी जारी है वेट लिफ्टिंग का। इसके अलावा लवप्रीत सिंह जो 110 किलो में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, और एथलेटिक्स की बात करें तो शॉर्ट पुट में और जो है दूसरे मुकाबलों में भी भारत 11:30 बजे से प्रतिस्पर्धा करती नजर आएगी। हाई जंप में तेजस्विन श्रीशंकर भी खेलते हुए दिखेंगे।
2: अच्छा विशेष, अब तक भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं, और कौन सी ऐसी स्पर्धाएं हैं जिनमें भारत को भारत से हमें उम्मीद करनी चाहिए और अधिक पदक हासिल करने की?
4: ये सबसे ज्यादा
2: विशेषकर स्वर्ण पदक की बात कर रहा
4: हूं। जी अगर स्वर्ण पदक या पदकों की भी हम बात करें तो सबसे ज्यादा उम्मीदें भारत को बॉक्सर्स से होगी, अपने मुक्केबाज

0: से, जहां पर जादू मनी सिंह 55 किलोग्राम और ये सचिन सिवाच 60 किलोग्राम, अंकुश पंगाल 80 किलोग्राम और नरेंद्र बनवाल 90 किलोग्राम, ये मेंस कैटेगरी में भारत के लिए पहले ही पदक पक्का कर चुके हैं और अब इनसे उम्मीद होगी कि ये स्वर्ण पदक के लिए बेहतरीन प्रतिस्पर्धा करें। वहीं महिलाओं में अगर बात करें तो साक्षी चौधरी 51 किलोग्राम, प्रीति पवार 54 किलोग्राम, जैस्मिन लंबोरिया 57 किलोग्राम, प्रिया घांगस 60 किलोग्राम, अरुंधति चौधरी 70 किलोग्राम और लवलीना जो है 75 किलोग्राम में भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर चुके हैं। तो इस तरह 10 मेडल जो है भारत के वो पहले से ही सुनिश्चित हो चुके हैं मुक्केबाजी में और ये खिलाड़ी बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिख सकते हैं स्वर्ण पदक की रेस में।
1: सारे खिलाड़ियों को हम शुभकामनाएं देते हुए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की ही बात करेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों की पुरुष त्रिकूद स्पर्धा के क्वालिफिकेशन राउंड में राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी प्रवीण चित्रावेल दूसरे और सिल्वा प्रभु ने तीसरे स्थान पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। चित्रावेल ने अपने पहले और एकमात्र प्रयास में 16.41 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। ठंडे और तेज हवाओं वाले मौसम के कारण 14 में से कोई भी एथलीट 16.60 मीटर के स्वतः क्वालिफिकेशन मानक को पार नहीं कर सका। चित्रावेल ने दूसरा और तीसरा प्रयास नहीं किया। उनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड 17.37 मीटर है। दूसरी ओर सेल्वा प्रभु ने अपने अंतिम प्रयास में 16.26 मीटर की कूद लगाकर तीसरा स्थान हासिल किया और फाइनल में जगह बनाई। और अब बात स्क्वैश की। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने लगातार दूसरी बार स्क्वैश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को कड़े मुकाबले में 2-1 से हराया। वहीं भारतीय महिला टीम को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अमरीका के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। एक रिपोर्ट।
2: 5वीं वरीयता प्राप्त भारतीय पुरुष टीम की शुरुआत क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शानदार रही। आर्यवीर दीवान ने रोनी हिकलिंग को 11-9, 12-10, 11-5 से हराते हुए भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। हालांकि इसके बाद युशा नफीस को रोमांचक मुकाबले में इस्माइल खलील के खिलाफ 11-7, 8-11, 11-4, 13-11, 11-7 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं गुरवीर सिंह ने सीधे गेम में जॉर्ज ग्रिफिथ्स को 11-3, 11-8, 11-6 से हराकर भारत को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया। सेमीफाइनल में अब भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला अमेरिका से होगा। अमेरिका ने 8वीं वरीयता प्राप्त जापान को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वहीं महिलाओं के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अमेरिका ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत ने मुकाबले की शुरुआत दमदार अंदाज में की। मौजूदा वर्ल्ड जूनियर चैंपियन अनाहत सिंह ने दिया यादव को 11-7, 11-5, 11-4 से सीधे गेम में हराया। हालांकि भारतीय टीम अपनी इस बढ़त को बरकरार नहीं रख सकी। शार्लेट सेज ने रुद्र सिंह को 11-6, 11-4, 11-8 से हराकर स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद निर्णायक मुकाबले में लीली बोरेल ने अनिका दुबे को 13-11, 11-8, 11-6 से हराते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब अमेरिका का सामना डिफेंडिंग चैंपियन मिश्र से होगा। मिश्र ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई है। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात बैडमिंटन की। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुड्डा, तन्वी शर्मा और दीपिका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं अनमोल खरब, तान्या हेमंत को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, जबकि पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। एचएस प्रणय हारने के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शशांक कुमार।
3: किरण ने थारून मन्नेपल्ली को महज 32 मिनट में 21-15, 21-16 से हराकर अंतिम आठ में प्रवेश किया। अब उनका मुकाबला जापान के युदाई ओकिमोतो से होगा। महिला सिंगल्स में तीसरी वरीयता प्राप्त उन्नति ने तान्या हेमंत को 21-19, 21-12 से, तन्वी ने इंडोनेशिया की थलिता को 21-17, 22-20 से और देविका ने इंडोनेशिया की निकांडे को 21-16, 21-15 से हराया। उन्नति और देविका क्वार्टर फाइनल में आमने सामने होंगी, जबकि तन्वी थाईलैंड की सुपिनिडा केट थोंग से खेलेंगी। वहीं एचएस प्रणय और अनमोल खरब हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात क्रिकेट की। भारत के दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। रहाणे ने भारत के लिए अपना अंतिम टेस्ट मैच 2023 में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान खेला था। वहीं एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने अपना अंतिम मुकाबला 2018 में

0: इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। उनके क्रिकेट करियर पर नजर डाल रहे हैं हमारी सहयोगी विशाल शर्मा।
1: Today, I feel the timing is right for me to move on and announce my retirement from international cricket and all format. The dream was always to wear the India cap. Since the time I made my debut as a first-class cricketer, Indian cricket has grown tremendous and I feel so proud to have been the part of over the last 20 years. While my chapter as an Indian cricketer comes to an end, my journey with the game doesn't. I look forward to helping the next generation, sharing the values this sport has taught me and giving back to the game that has given me everything. To the BCCI, the MCA, my teammates, my coaches, every IPL franchisee, to Radhika, my entire family, my friends and everyone who stood by me, thank you. And a very special thank you to all the cricket fans who supported me every highs and lows. Thank you for your love, your faith and your support. Cap number 278 signing off.
2: 38 वर्षीय अजिंक्य रहाणे ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में भारत के लिए कुल 85 टेस्ट, 90 एकदिवसीय और 20 T20 मैच खेले। उन्होंने भारत के लिए 2013 में डेब्यू किया था। रहाणे ने टेस्ट में 12 शतकों और 26 अर्धशतकों के साथ कुल 5077 रन बनाए। वहीं एक दिवसीय क्रिकेट में 35 के औसत के साथ 2962 रन बनाए, जिसमें 3 शतक और 24 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं T20 मुकाबलों में रहाणे 20 मैच में केवल 375 रन ही बना सके। रहाणे के नाम कई रिकॉर्ड हैं, लेकिन अगर एक खास रिकॉर्ड की बात करें तो साल 2015 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच की दोनों ही पारियों में शतक लगाकर रहाणे ने भारतीय टीम को बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। पहली पारी में रहाणे की 127 रनों की लाजवाब पारी के बूते टीम इंडिया 334 रनों के टोटल तक पहुंचने में सफल रही थी। वहीं दूसरी पारी में रहाणे 100 रन बनाकर नाबाद रहे थे। रहाणे नंबर 5 या उससे नीचे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही पारियों में शतक लगाने वाले इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं। बतौर कप्तान अजिंक्य रहाणे का रिकॉर्ड जबरदस्त रहा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में 36 रनों पर ऑल आउट होने और हार झेलने के बाद भारतीय टीम का मनोबल पूरी तरह से टूटा हुआ था। नियमित कप्तान विराट कोहली निजी कारणों से स्वदेश लौट आए थे। सीरीज
0: और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर होगी मुलाकात खेल जगत की हर खबर के साथ। इसी के साथ अतहर सईद को स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज, पश्चिम एशिया संघर्ष की तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
2: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके

0: साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
1: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर इस समय चर्चा चल रही है। लोकसभा ने विधेयक कल पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं और उन पर विचार करूंगा।
2: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
1: विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावटी बदलाव किए हैं।
4: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं मानी।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में आज विधायी कामकाज हुए।
5: आज संसद के दोनों सदनों में विधायी कामकाज हुआ। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। राज्यसभा ने यह विधेयक कल पारित किया था। इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद निचले सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में अभी लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है, जिसे लोकसभा ने कल मंजूरी दी थी। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई एक बार स्थगित करनी पड़ी। इस व्यवधान के कारण निचले सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चले। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में रबी फसलों के लिए उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर भी चर्चा की गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू नहीं होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
6: भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो अपना विरोध प्रकट करने आए थे, उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगर ये उन पर जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं, जिन्होंने हिंसा की है, तोड़फोड़ की, उन पर लागू नहीं होगा।
1: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लगभग 17,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सेठ ने बताया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है।
7: संकल्प एयरफोर्स और SIDM के द्वारा जो आज जितने कहते हैं इंडस्ट्री के लोग, स्टार्टअप के लोग, एक जिद है कि भारत को 2047 विकसित भारत बनाना है। और अभी आपने देखा होगा कैसे 74,000 स्पेयर्स एयरफोर्स के जो इंडिजिनस हो गए।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वर्ष 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले से ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। पर्यटन मंत्रालय और

0: इंडिगो ने अतुल्य भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के पास एक असाधारण पर्यटन गाथा है जिसे सरकार और इंडिगो मिलकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के लिए आज हुए उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। बांकीपुर में मतदान प्रतिशत 34% से अधिक रहा, जबकि मंजलपुर में 37% और दतिया में 71% से अधिक वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बटूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों में तलाशी अभियान चलाया। फिदायिन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर नए मिसाइल हमलों से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और युद्ध विराम की उम्मीदें कम हो गई हैं। अन्य देश भी संघर्ष में शामिल होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य हवाई अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ अमरीका के जवाबी हमलों से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने कहा है कि केशम द्वीप पर हुए हमले में 3 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना की घातक कार्रवाई के बीच पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें तेज हो गई हैं। भारत ने चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने का प्रयास बताया है। उड़ीसा की महानदी में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित जिलों में बचाव राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, हालांकि इसके मध्यम स्तर की बाढ़ बने रहने की उम्मीद है। भारी बारिश के कारण महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने आज जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। उन्होंने बताया है कि अब तक 20 जिलों के 7,00,000 लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने बरगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर, कलाहंडी, नवापड़ा और नवरंगपुर के लिए येलो चेतावनी लागू है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात में अहमदाबाद, आणंद, सूरत और नवसारी समेत 13 जिलों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राज्य में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हाई अलर्ट वाले जिलों की प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया गया, जबकि आपातकालीन राहत और बचाव कार्यों के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की 3 सेनाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। राज्य सरकार ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना है। इसी तरह का मौसम पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में अगले 2 से 3 दिन तक रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से भेंट की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे

0: स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 274 अंक बढ़कर 77,928 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24,317 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 95.68 रुपये पर बंद हुआ।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि पहली जुलाई तक देश में 33 करोड़ 13 लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ता थे। इनमें से 10 करोड़ 58 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन शामिल हैं। श्री गोपी ने कहा कि सरकार घरों में किफायती कीमतों पर घरेलू एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र INSpace ने कहा है कि निजी अंतरिक्ष कंपनियों को किसी भी नियोजित अंतरिक्ष वस्तु की पुनः वापसी के दौरान दुर्घटना जोखिम को न्यूनतम करना होगा। INSpace अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की सभी गतिविधियों पर नजर रखने वाली एजेंसी है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। प्रवीण चित्रावेल और सिल्वा प्रभु ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वहीं अनमोल खरब, तान्या हेमंत और को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने कहा नीट परीक्षा विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज। पश्चिम एशिया संघर्ष की तत्काल समाधान की उम्मीद कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Parliament passes legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem. Prime Minister Narendra Modi chairs meeting of Cabinet Committee on Security to review West Asia situation, stresses on unified mechanism for safeguarding citizens' interest, including seafarers. Delhi government says no legal action against individuals who participated in NEET protests, no protection for those with criminal background. US and Iran exchange fresh strikes, dimming hopes for a quick resolution of West Asia conflict. Red alert issued for very heavy rainfall in Gujarat and Madhya Maharashtra tomorrow. Flood situation in Odisha remains critical. Javelin throwers Neeraj Chopra, Rohit Yadav and Yashvir Singh qualify for the men's final at the Commonwealth Games. The Parliament has passed the Prevention of Insults to the National Honour Amendment Bill 2026 with the Lok Sabha approving it today. The Rajya Sabha passed the legislation yesterday. The law will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jana Gana Mana and make the insult to the national song a criminal offence. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine or both. Meanwhile, in the Rajya Sabha, the discussion is underway on Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh moved the bill. Chairman C.P. Radhakrishnan said that 7 hours have been allocated for the discussion on the bill. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. We have more.

0: without water. Around 19,000 households remain without electricity as of this afternoon. Neeraj Chopra has qualified for the men's javelin finals in the Commonwealth Games in Glasgow. Javelin throwers Rohit Yadav and Yashvir Singh have also entered the finals. Earlier, India scripted history in para-athletics, securing a historic 1-2 finish in the men's 100 metres T47 final as Dilip Mahadu Gavit won the gold and Mohammad Basil M claimed silver last night. India holds the 8th spot in the Commonwealth Games medal with 15 medals including 3 gold, 9 silver and 3 bronze. In Taipei Open Badminton, Unnati Hooda, Devika Sihag, Tanvi Sharma and Kiran George have progressed to the singles quarterfinals. However, Anmol Kharb and Aegis Pranoy crashed out in the second round matches today. Unnati Hooda defeated Tanya Hemant in an all-Indian tie. Tanvi Sharma defeated Indonesia's Thalita Wiryawau to reach the last 8. Devika Sihag beat Indonesia's Nikadek Dinda Pratiwi. Devika and Unnati will face each other in the top 8. Kiran George kept the Indian challenge alive in the men's singles defeating compatriot Tharun Mannapalli. Benchmark domestic equity indices ended with modest gains today. The Sensex rose 274 points or 0.35% to close at 77,928, while Nifty added 67 points or 0.3% to settle at 24,317. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index dropped 0.3%, while the small-cap 100 index fell nearly 0.6%. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament passes legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem. Prime Minister Narendra Modi chairs meeting of Cabinet Committee on Security to review West Asia situation, stresses on unified mechanism for safeguarding citizens' interest including seafarers. Delhi government says no legal action against individuals who participated in NEET protests, no protection for those with criminal background. US and Iran exchange fresh strikes, dimming hopes for a quick resolution of West Asia conflict. Red alert issued for very heavy rainfall in Gujarat and Madhya Maharashtra tomorrow. Flood situation in Odisha remains critical. Javelin throwers Neeraj Chopra, Rohit Yadav and Yashvir Singh qualify for the men's final at the Commonwealth Games. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे न्यूज एट 9। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 9:15 हुए हैं। तो चलिए अब हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले चंद कार्यक्रमों से। श्रोताओं, कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात, शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग रंग कल शाम 4:30 पर। 5:35 पर साप्ताहिक मनपा कार्यक्रम कुंसल, साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण कल शाम 7:11 पर तथा रात्रि 8 बजे आपकी वजह फरमाई शो पर आधारित सदाबहार पुराने नगमों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। श्रोताओं, तो ये रहे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कल के चंद कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे कल दोपहर 2 बजे मिड डे न्यूज के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम कक्ष में उपस्थित डाटा एंट्री ऑपरेटर श्रीमती संगीत सोमू, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक श्री हिमांतो सुरगरी और सुश्री शिखा डेका, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक श्री न्यूटन बोरा और श्री अच्युत बर्मन तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मुझे यानी हिंदी उद्घोषिका गिन्नल हामू को दीजिए इजाजत। समय रात्रि के 9:16